गाइस, जिंदगी में ना क्रैशेस, एक्सीडेंट्स, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस कभी भी हो सकता है. और स्पेशली आजकल के ज़माने में, पता है क्या अभी टाइम चल रहा है? अभी टाइम चल रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का. इफ़ यू आर अ साइन रूल्ड बाय द मर्क्यूरी, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम अ वर्गो और मेरा तो मेन रूलिंग प्लैनेट इज मर्क्यूरी ओनली. तो जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, सच इज लाइफ. यू पुट अ स्माइल एंड यू कीप लिविंग ऑन. लेकिन अगर आपके साथ भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कुछ अजीब अजीब से खेल खेल रहा है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ कुछ हो गया, या फिर मतलब यू नो समथिंग दैट यू डिड नॉट प्लान फॉर, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स ओवर हियर, देन रिकवरिंग फ्रॉम इट कैन टेक मच मच मच मच मच लॉन्गर टाइम. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कॉल अप ओमर ख्वाजा. He will make sure that he will handle the legal battle while you can focus on your healing energy and recovering faster. Guys, mental health is very, very, very, very important. So just delegate the work. It's so easy. Life में ना इसीलिए इंडिया में सबके पास maids होती थी और एक वो बाई होती थी, क्योंकि सारा घर का छोटा मोटा काम बाई करती थी. आप अपने आप पर focus करो. That is what Omar Khwaja is. No, I'm not saying that, you know, he is something that we don't want to call him. But he will help you handle your case really well. He will fight for the compensation that you are entitled to. You pay nothing unless your case is won. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com for a free consultation. Delegation is the best way. That's why we all have people who can handle the work for us. You know, don't stress out over, you know, insurance compensation, this and that. Give it to an expert who knows how to deal with these kind of people, okay? And here we go.

0: Guys, I came across something really amazing on my Insta today, and I thought I should share it with you. It's not anything new, it's not anything that you don't know already, but maybe you do, maybe you have ignored it for a long time, but this is your lucky day because I'm going to remind you. तो क्या मैंने पढ़ा? मैंने पढ़ा ये, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग. इसको ना अपनी लाइफ की पॉलिसी की तरह, लाइक ऐसे ही लाइफ का जो मोटिव मोटिव होता है ना, मेक दिस इनटू योर लाइफ गोल और योर लाइफ सेइंग, वट एवर, यू नो हाउ टू से इट, यू नो वट आई एम सेइंग, राइट? तो इट सेज योर बॉडी, दैट इज द बॉडी दैट वी आर ऑल लिविंग इन, इट इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गर देन एनी जॉब, एनी हैंड बैग, एनी कार, एनी एक्सपेंसिव हाउस. सो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट यू गाइज. मतलब ये घर, गाड़ी, एक्सपेंसिव कपड़े, डिजाइनर घड़ी, डिजाइनर जूते, डिजाइनर बैग, डिजाइनर परफ्यूम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर जस्ट मटीरियल थिंग्स. बट इफ यू डोंट हैव योर हेल्थ, इफ यू डोंट हैव योर बॉडी, एंड इफ यू डोंट हैव दी एनर्जी टू इंजॉय ऑल ऑफ दीज थिंग्स, then none of these things matter. So invest in your health, whether it is by following a good diet, you know, seeking mental health professionals, or going to the gym, or just meeting your friends and family, whatever it is, invest in yourself, because no job, no expensive material things is worth it. We are about to go into break, and I will see you in 4 seconds after the break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो.
15: चीनी, हुकम मेरे आका. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
16: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
15: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
16: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
15: और एंटरटेनमेंट,
16: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
16: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
14: ये तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
17: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Hey, Jean, since you're still on the line, do you have the answer to the question?
1: Okay.
0: What is the answer to the question? What is the Bollywood song that it sounds like? इसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चन सुन लो पहले ही कॉल पे पड़े रहते हो तुम लोग सुन लिया करो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ओके वी विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट कॉलर बट थैंक्स फॉर कॉलिंग हाय यू आर ऑन एयर थैंक यू फॉर कॉलिंग हेलो हेलो कोई बात नहीं वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉलर हाय यू आर ऑन एयर थैंक यू फॉर कॉलिंग
2: हाय दिस इज अरुण
0: हाय अरुण डू यू हैव द आंसर टू द क्वेश्चन
2: Yes, yes.
0: Go for it.
2: Dil mera churaya kyun? Jab ye dil todna hi tha.
0: Absolutely correct. Dekho bhai, Jinan ne pehle hi call dial kar di, to Jinan ko answer de diya.
2: Maine wait kiya tha. Gaana chala tabhi call kiya maine.
0: Exactly. Main wahi keh rahi hu. Gaana hamesha pehle sun lena chahiye. Sunne ke pehle hi hum answer denge to kaise chalega, hai na?
2: Nahi, nahi.
0: अरुण मैं जस्ट स्टे ऑन द लाइन ठीक है आई विल प्ले अ सॉन्ग एंड देन टेक योर इन्फॉर्मेशन इन द मीन टाइम गाइस तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए एक सेकंड ये तो वैम ही चल रहा है लास्ट क्रिसमस एंड हियर वी गो हंसते

Friends, we are back. This is 8:17 on the clock and you are listening to Ipila Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. Jaise maine aapko promise kiya tha, main ek nahi do do winners choose karne wali hoon giveaway ke liye. But for that, we're going to play a second round of the copycat song. That is correct. So, guys, without further ado, let's play. My number is 972-235-5555. Or hum khelenge copycat song. कॉपीकैट सॉन्ग क्या है हमारा? आई एम गोइंग अहेड एंड प्लेइंग इट. आपको क्या करना है, आपको उसका बॉलीवुड वर्जन कौन सा है बताना है, और अगर आप गाओगे तो बोनस पॉइंट्स, एक्स्ट्रा प्राइज नहीं मिलेगा. एक्सक्यूज मी, बोनस पॉइंट्स मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार मिलेगा. और क्या आप जीतेंगे? इट्स द सेम गिव अवे, वन डोसा एंड अ फिल्टर कॉफी फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द सेकेंड राउंड. अगर आप जीत चुके हैं इन द लास्ट वन मंथ, then please allow someone who has not won the giveaway, okay? Let somebody who has never won the giveaway win this time.

0: Yeah, hello.
1: Yeah, just turn on
0: Yeah,
1: the
0: hi.
1: radio in the background. Yeah.
0: Yeah.
1: Okay, first of all, tell
0: So,
1: me your name and then tell me the correct answer.
0: my name is Mohammed, and the answer is Pehli
1: Very good, Mohammed. Shandar pradarshan,
2: Nazar
1: Okay, Mohammed, आप जीत चुके हैं सैनिटली रेस्टोरेंट से एक डोसा एंड एक फिल्टर कॉफी. आप लाइन पर बने रहिए, मैं गाना लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, ठीक है?
0: Okay, thank you.
1: Okay, guys, enjoy the song. In the meantime, this is Badshah with Junoon.

0: back, guys. We are about to go into a break in 2 minutes. After that, when we come back, then we are going to play a track for Zimran. Lekin jaane se pehle, guys, aapko pata hai Prabhu Deva is coming to Dallas. Yes, I think Dallas is becoming the new hub for all the Indian artists, you know, because I think all the Indian artists have finally realized ki bhaiya, Dallas ki janta is truly invested in their Indian artists and their desi talent. So, agar aap tour pe ja rahe hain internationally aur Dallas nahi aaye, to matlab aapne kiya hi kya life mein. Dallas ki janta is very loyal to its desi artists, and we love it that month after month, har mahine koi naya artist aaye ja raha hai. हर महीने क्या हर हफ्ते ही कोई नया आर्टिस्ट आ रहा है एंड वी लव इट. अभी विशाल शेखर आए थे एंड नाउ प्रभु देवा इज कमिंग. यू नो व्हेन ही इज परफॉर्मिंग ऑगस्ट 1st. ओ माय गॉश, ऑगस्ट 1st को गाइस मेरा भी शो होने वाला है. आई अंडरस्टैंड दोनों शो एक ही दिन पे हो रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करना हमारे दोनों शोज में से किसी एक शो पे आ जाना. आई विल टेल यू मोर अबाउट बोथ ऑफ दोज थिंग्स आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम दिस ब्रेक. This is your host, Ippy, and we are about to go into a break in about 15 seconds. Lekin jaane se pehle, agar aap mujhe call karke kuch bata rahe the, and by chance I missed your call because I was in another line, please feel free to call me back. I'm right here, I'm taking requests, and here we go.
1: Heere moti, main na chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Documents ya parcel bhejni hai?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click by thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
11: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
0: Guys, we are back and you're listening to Funasia Radio 104.9 FM and this is your host, एपी द हिपी, मैं आपके साथ रहने वाली हूँ आज पूरे 10 बजे तक. इट इज ओनली 8:33 और 8:33 पे नॉर्मली हमारा दूसरा गिव अवे होता है. आज मेरे पास दूसरा गिव अवे नहीं है, लेकिन आई एम टेकिंग रिक्वेस्ट एंड लव मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. तो अगर आपको किसी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलनी है एंड यू वांट टू डू लाइक अ ग्रैंड जेस्चर, देन यू नीड टू कॉल मी एंड आई विल से इट ऑन योर बिहाफ ऑन एयर. यस, आई कैन से हेलो सुप्रिया या सुनीता. परमजीत कन्फेसेस हिज लव टू यू एंड ही सेज सॉरी वगैरह वगैरह, या फिर हैप्पी बर्थडे सुनैना. आई डोंट नो हु दीज पीपल आर, लेकिन आई एम श्योर देयर इज अ सुनैना समवेयर ऑन द लिसनर एंड अ सुप्रिया या सुनीता. आई डोंट नो व्हाई आर ऑल द नेम्स विद एस, व्हाई आई डोंट नो, लेकिन एस इज अ गुड लेटर. इट्स नॉट माई लेटर, माई लेटर इज आई, ओनली आई. दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू इमरान हु इज रिक्वेस्टेड फॉर बंधु 2.0.
4: सिर्फ पागल है क्या?
12: क्यों?
4: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल.
12: But why? It's iconic.
4: फिल्म में हमारे
0: We're gonna skip those dialogues because I am sure you don't want to listen to the dialogues, क्योंकि आप सब लोगों ने मूवी ऑलरेडी देख ली है. तो इसीलिए कई बार क्या होता है ना, गाने लगाते हैं लेकिन गानों में डायलॉग्स भी होते हैं बड़े भर भर के. तो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्किप द डायलॉग्स.

योर बैक, तुम ही हो बंधु, तुम ही, आप सभी मेरे बंधु हैं क्योंकि आप मेरा शो सुन रहे हैं हफ्ते भर हफ्ते, और मुझे अभी यहाँ पे फनेशिया में काम करते हुए हो गए हैं पूरे 2 महीने, पूरे 2 महीने, यस एग्जैक्टली गाइज. लेकिन मैं, बिफोर वी गो ऑन टू दैट, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज, प्रभु देवा इज कमिंग टू डैलस. प्रभु देवा दी आइकॉनिक इंडियन माइकल जैक्सन, आई मीन हमने उनको निक नेम दिया हुआ है इंडियन माइकल जैक्सन बिकॉज हिज डांसिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड ही इज कमिंग ऑन 1st August एट द टेक्सस ट्रस्ट सी यू थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. दैट इज राइट. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू DFW. येस, दिस इज नॉट गोना बी जस्ट अ सिंगिंग कॉन्सर्ट, इट्स एक्चुअली गोना बी अ डांसिंग कॉन्सर्ट. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलिएब. ओ माई गॉश, आई लव हर, शी इज सो गुड. शी वॉज लाइक द विनर इन डांस इंडिया डांस, एंड शी वॉज ऑल्सो इन दैट मूवी ABCD. और मतलब शी इज बिन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट शोज. शी इज बिन इन द डांसिंग विद द स्टार्स, इंडिया वाला डांसिंग विद द स्टार्स, एंड देन शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द participants in the American show So You Think You Can Dance. That's how she landed up going to India in the first place, because she got so many breaks. She's such a great dancer. And we have Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa, and Sanve Meghna for the ultimate Pan-Indian dance concert. Yes, it is on Saturday, 1st of August. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Okay? And as you know, Phanesia is the media partners. Sometimes, this is not on my show, by the way. Sometimes on other people's shows, we also give out free tickets to the concert. So just keep listening all the time to Phanesia. I know all the time to possible nahi hota. Lekin jabhi bhi aapko time mile, aap zarur suniye. Isi khushi mein ek Prabhu Deva pe picturize kiya hua ek gana lagata hai, one of the earlier songs. I actually really like this song. Lekin jab ye gana first aaya tha na, मतलब द लिरिक्स डोंट रियली मेक एनी सेंस. आई एम श्योर दे मेड सेंस इन तमिल, विच वॉज आई थिंक द ओरिजिनल लैंग्वेज इन विच इट वॉज रिटन. लेकिन जब उसको हिंदी में डब किया गया, उसमें एक लाइन थी, जुरासिक पार्क में सुंदर से जोड़े जैज म्यूजिक गाए मिल के. एंड आई वॉज थिंकिंग, यार ये जुरासिक पार्क में जैज म्यूजिक क्यों सुन रहे हैं लोग? अपनी जान नहीं बचा रहे कि जैज म्यूजिक सुन के चिल कर रहे हैं? I mean, I know jazz music is pretty tense, but why are we listening to jazz music in Jurassic Park? Sometimes translations don't make sense, but that's okay. Sometimes you don't need to pay attention to the lyrics. You just need to enjoy the beats.

क्या होगा भाई, साथ में खेल के होगा क्या, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, बट हमें तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि गाइस आपको पता है होको होको इज दिस इनक्रेडिबल इंडियन फूड चेन ऑल अक्रॉस द यूरोप ते ऑल अक्रॉस अमेरिका, नॉट यूरोप। मेरे सपने यूरोप के हैं, काश समर में मैं यूरोप वेकेशन ले सकती, लेकिन मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट माई ड्रीम्स मोर देन माई रियलिटीज। लेकिन गाइज जो मैं बोल रही थी, होको इज इन टेक्सास नाउ। दे आर लोकेटेड इन 6 लोकेशंस ऑल अक्रॉस द यूएस: सदर्न कैरोलाइना, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, हॉफमैन, इलिनॉय, ओहायो, जॉर्जिया, एंड फाइनली इन टेक्सास। यू हैव फाउंड ए ट्रूली iconic food brand. When you're just hearing its name, it brings back a lot of memories from your childhood. Yummy, yummy. That's exactly what Hoco has been for generations across India, and now it is finally here in North Texas. अगर आप crave कर रहे हैं चना पूड़ी, iconic sandwiches, या flavorful curries, या फिर the famous होको कोल्ड कोको, ओहो क्या नाम है, होको कोल्ड कोको, दैट पीपल एब्सोल्युटली स्वेयर बाय। आई हैव टू गो ट्राई इट आउट नाउ यार, व्हाट इज दिस कोल्ड कोको। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिप टू इंडिया एनी मोर। अपेरेंटली दे आर बेस्ड इन इंडिया टू। ओके, आई डेंट नो दैट। आई डोंट नो वेयर होको इज इन इंडिया, बट इट वॉज नॉट देयर इन डेली, सो आई डेंट ट्राई इट। बट नाउ दैट इट्स हेयर इन नॉर्थ टेक्सस, आई विल 100% गो ट्राई इट। विजिट होको एट 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, Frisco, Texas, and experience the authentic flavors that have made it India's most loved food brands, okay? For the full menu and more information, visit hoco.us. That is HOCCO, Hoco, that's hoco.us, okay? Come hungry and leave with the taste of India. Guys, it's kind of like, I looked at the menu real quickly because I'm always on the hunt for like new restaurants. And besides the regular curry, naan, shan, all of that regular menu, which you get everywhere else, they have this amazing wrap section and a really cool, like, bowl section. It's kind of like chipotle meets Indian food. And I call it chipotle because it sounds so much more fun instead of chipotle, right? So, they have a chicken tikka bowl, smoked chicken bowl, a lamb galotti bowl. Do you know how long it has been since I've had a lamb good galotti kebab? Like, it's so, so good. Oh my gosh. Tandoori salmon bowl, spicy shrimp bowl, smoked paneer tikka. Ay, hi, hi, hi. Paneer malai tikka bowl, potato masala bowl, signature chana masala bowl. Guys, yahan jana to banta hai. Chalo, is weekend pe plan banate hai. We'll go try one of these bowls at Hoco. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए, एंड देन वी आर गोना गो इनटू अ ब्रेक इन अबाउट 8 मिनट्स, बट डोंट वरी, आई विल स्टिल बी हियर एंटरटेनिंग यू।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
4: ओह हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
5: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Friends, we are back. I'm still here with you. This is Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is your bestie, Ippy the Hippie. And you guys are listening to An Evening in Dallas. That's right, guys. भाई 1 अगस्त को बहुत सारी इवेंट्स होने वाली है. प्रभु देवा का इवेंट तो जैसे मैंने अनाउंस कर ही दिया था, बट उसके अलावा गाइज मेरा भी इवेंट हो रहा है. अगर आपको मेरी सुरीली आवाज़ आ गई सुनने में, जो मैं बीच बीच में गाती रहती हूँ, एग्जैक्टली, तो आप प्लीज़ मेरे शो में आइए. आई एम परफॉर्मिंग एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन, ठीक है? एंड दिस इज़ माई शो. आई हैव सो जिनको मेरे बारे में नहीं पता, आई हैव दिस हिस्ट्री ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेस. And I have been performing live since 2009. So it's been over 15 years at this point. Radio toh is very recent for me. Lekin I have been on stage and I have sung for lots of people for a long time. I achieved a lot of success in India. बिफोर आई मूव टू द US, और उसी के बलबूते पे मैं US आ पाई हूँ ऑन एन आर्टिस्ट वीज़ा, बिकॉज आई कैन डू दैट, यू नो. सो I am finally going back to my, not my roots, I would say, but things that gave me success in India in the first place, which is blues music. I'm organizing an International Blues Day celebration on 1st of August at Steve's Wine Bar. It is going to be an amazing show with my house band, and I will be performing for the first hour and a half. And then we have an open jam where we invite guest artists. And if anybody wants to come and jam on a few 12-bar blues tunes, it has to be blues. It's not Bollywood, it is blues. But yes, I mean, America mein hai, aapko blues ka matlab pata hona chahiye yaar. Nahi pata to Google kar lo. Nahi pata to main bhi bata sakti hu aapko kuch time baad, lekin abhi to nahi. Aur it's actually tied to the American history quite a bit. To blues is basically, aap keh sakte hai, America ka folk music hai. Theek hai? फोक म्यूज़िक अमेरिका में वैसे इट्स कंसिडर टू बी समथिंग एल्स, लेकिन जो हम इंडिया के हिसाब से जो रीजनल म्यूज़िक बोलते हैं ना, दैट इज़ ब्लूज़ म्यूज़िक फॉर अमेरिका बेसिकली. तो ब्लूज़ ना बजा के ब्लूज़ इंस्पायर्ड ये गाना सुनिए आप.

यारो दोस्तों कैसे हैं आप। इट इज 9:14 ऑन द क्लॉक एंड दिस इज इपी द हिपी। बाय द वे गाइस, आपको पता है आज कौन सा दिन है बिसाइड्स थर्सडे? ऑफ कोर्स थर्सडे तो है ही, लेकिन आपको पता है आज कौन सा दिन है? टुडे इज आल्सो नेशनल आइसक्रीम डे एंड देर आर ऑल दीज डिफरेंट आइसक्रीम चेन्स दैट डू आर डूइंग ऑफर्स। तो आई कॉन्ट रियली प्रमोट एनी ऑफ देम बिकॉज आई मीन यू नो दिस इज अ रेडियो, वी आर रनिंग अ बिजनेस, सो वी डोंट डू फ्री प्रमोशन। हाउ एवर, अगर आपको अपनी फ्री आइसक्रीम डील्स चाहिए तो आप ज़रूर गूगल कर सकते हैं। एंड आई बिलीव थोड़ा लेट हो गया वैसे तो मुझे बोलते बोलते, लेकिन रात में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। मैं यहाँ से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके मैं आई ऑलवेज स्टॉप एट ब्रॉम्स एंड आई हैव द फ्रोजन योगर्ट कोन फ्रॉम देयर विच इज़ एक्चुअली माई फेवरेट एंड आई एम गोइंग टू डू दैट टुडे ऑल्सो। आई डोंट थिंक दे हैव एनी ऑफर्स दो, बट यू शुड चेक आउट वट एवर ऑफर्स आर देयर इन योर एरिया एंड मे बी यू गेट अ फ्री आइसक्रीम बार और लाइक एन आइसक्रीम कोन। कुछ महीनों पहले ना बेन एंड जेरीज में भी फ्री आइसक्रीम दे रहे थे एंड दैट वॉज ऑन सम नेशनल कोन डे और समथिंग। तो यू नो जस्ट कीप अ वॉच आउट फॉर ऑल दीज। अमेरिका हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री फूड दैट यू कैन एक्चुअली गेट, सो मेक श्योर यू गेट अ लॉट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़।

फ्रेंड्स, मैंने आज ना, आज तो नहीं, खैर रिसेंटली मैंने एक बहुत ही सैड सी स्टोरी देखी, एंड दैट वाज अबाउट द एक्ट्रेस सेलिना जेटली. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन, बट रिसेंटली शी इज़ कम बैक इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ अ रियली रियली कॉन्ट्रोवर्शियल डिवोर्स दैट शी इज़ हैविंग विथ हर जर्मन हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने अपना करियर वरियर सब छोड़ के, एंड शी हैड अ प्रिटी गुड करियर, यू नो, शी लेफ्ट ऑल ऑफ दैट, मैरिड दिस जर्मन गाय, वेंट टू जर्मनी टू लिव इन अ ब्रैंड न्यू कंट्री जहाँ जिसकी भाषा भी अलग है. मतलब अमेरिका आना एंड ऑल दैट इज स्टिल अ लिटल बिट ईजियर आई फील, क्योंकि इंग्लिश मोर और लेस हम सभी बोल लेते हैं, यू नो, बट टू गो बैक टू आई डोंट नो, टू अ कंट्री जिसकी लैंग्वेज हमें बिल्कुल भी नहीं पता, एंड टू लर्न अ एब्सोल्युटली ब्रैंड न्यू लैंग्वेज एंड अ न्यू कल्चर, इट्स रियली हार्ड. एंड शी डिड दैट, एंड देन हर हस्बैंड अपेरेंटली टुक ऑल हर एसेट्स, एंड शी डिड नॉट साइन अ प्रीनप, एंड ही जस्ट लाइक गेव हर अ डिवोर्स नोटिस, एंड शी हैड टू आस्क हर टू लिटिल किड्स टू रीड इट आउट बिकॉज द डिवोर्स नोटिस वॉज इन जर्मन. हाउ एम्बेरसिंग इज दैट एंड हाउ सैड इज दैट. आई मीन, वन आई वॉज रीडिंग दैट स्टोरी, एंड एक्चुअली देर वॉज एन इंटरव्यू एंड शी वॉज एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, शी ब्रोक आउट इन टीयर्स. आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, पुअर गर्ल, शी मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मच. तो एनी वेज, इफ यू गेट टू फॉलो दैट स्कूप यू कैन चेक इट आउट, बट यू डोंट हैव टू, इट्स टोटली अप टू यू. बट हियर इज द नेक्स्ट सॉन्ग.

0: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
1: लिया।
0: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
1: नहीं आया।
0: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.senadainc.com today.
3: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
4: It's Lawson.
3: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
4: It's Lawson.
3: Daddy, what is the law?
5: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
14: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: Guys, it is 9:30 on the clock. I'm here with you for another 30 minutes playing you some incredible music. This is your bestie, Ippy the Hippie, and I hope you enjoy this next song from Shadow and Light, an incredible band based out of Delhi. Lekin, they are making amazing music. And the pianist in that group is now, he has his own studio and he does incredible recordings and stuff. And he has also been, both of them actually, Shadow and Light, have been Grammy nominated. And Pavitra is now a pretty celebrated Tamil singer, Tamil, you know, Tollywood singer. And Anindo and Pavitra, both of them have collaborated with Saleem Suleiman on lots of amazing records. So this is their song called Kahani.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
4: Abe jaldi bol kal subah Panvel nikalna hai
5: Panvel ho ya Dallas safar tabhi mast Jab gaane ho zabardast only on Fun Asia Radio

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल। ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: रुको जरा, सबर करो।
4: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Phonesia.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
3: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट्स से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
8: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Phoenicia Radio, 104.9 FM. 104.9 FM.
1: 火山林。

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
2: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: I am Rahat Fateh Ali Khan, and you are listening to Radio Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

104.9 FM Funasia. Funasia. Fun Funafundan.

0: कितने आदमी थे?
1: सर्कल पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: Yo, yo, yo, yo, got an Angela, Abby, y'all already know, baby.

0: Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.
1: Banjo!
2: लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मारना दे मैनू इंतजार में।

0: Tax offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help keep your finances organized, compliant, and future ready. AG FinTax is trusted, efficient, and committed to your success. AG FinTax is your partner in building a stronger financial future. You can call them. I'll give you a number, 469-942-9888, or visit agfintax.com, agfintax.com. And we want to thank them for sponsoring this part of our show today. Big thanks to AG FinTax.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
15: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
16: Tarikh par tarikh.
17: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
15: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
17: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
18: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
19: Welcome to this final hour of our program on this beautiful Friday morning. We are heading towards 92 degrees later today and leading into a very hot weekend and an even hotter week next week. All the information that you need to take on this day is coming up for you. And of course, you all are ready for Saturday's England and France. Who's going to win that bronze medal in Miami? And then, of course, Argentina and Spain in New Jersey on Sunday. President Trump will present that trophy as we get started with this hour of the program with Alpha.

0: Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
0: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
3: एक बात बता, retirement में सबसे scary क्या होता है?
4: क्या?
3: Salary बंद हो जाती है.
4: और bills बंद नहीं होते.
3: Exactly. इसलिए smart लोग wealth tactics से strategy बनाते हैं.
4: मतलब?
3: ऐसी strategy जहां income रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
1: The wealth tactic. Smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
5: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099।
12: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
13: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
17: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
18: ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਓ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।

0: Tomorrow we should know who gets the bronze between England and France, and on Sunday, Argentina and Spain in New Jersey. And President Trump will be presenting the trophy of the World Cup this Sunday. So it's going to be an exciting weekend for all of you. That, ladies and gentlemen, is my show for today. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10 right here on the Funasia Network. I'm going to leave my direct number for those of you who'd like to get in touch with me, whether it's anything to do, actually, with the Funasia Network. Number in the studios. No, not the studios. My direct number, 214-675-1754.
1: This is the Funasia Network. You are listening to Funasia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Funasia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
7: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: It's Lawson.
9: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
10: It's Lawson.
9: Daddy, what is the law?
11: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
12: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting.
13: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो.
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
18: इन प्लेनो.
17: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
19: सेम टेस्ट से बोर हो गए? ट्राई समथिंग डिफरेंट. मैक्सिकन फ्यूजन, ग्लोबल फ्लेवर्स, हैप्पी आवर्स, नियॉन कैक्टस, फेयरव्यू Mexican, but different. Exactly.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years. Roll it again.

And it is Funisha Radio 104.9 FM that you are tuned into. Good morning to all of you. Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Funisha Radio 104.9 FM. A big shout out to Shabnam ji for an amazing morning drive time show that she brings for all of us right here. And yahan se jo meri journey shuru hoti hai aur wo 12:30 baje tak chalti hai Monday to Friday for all of you on this frequency. Aur वेदर की फ्रीक्वेंसी ये है कि भाई नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर है जो नॉर्मली रहता है इस वक्त जुलाई के महीने में, उससे ज़्यादा कूलर है. बट देन नथिंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि गेस व्हाट, गर्मी के दिन आने वाले हैं. गर्मी के दिन मतलब वो तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन गर्म और टेम्परेचर होने वाला है ओवर द वीकेंड. एंड वाई नॉट यार, दिस इज फीफा वीकेंड, इट कॉल्स फॉर इट. This is Gupshup Gali with me too. 17th of July. घड़ी में बजे हैं 10:11.

इन गानों में वाकई में खो जाते हैं, क्योंकि इन गानों में ना वो रिपीट वैल्यू है. कुछ बहुत सारे ऐसे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें वो रिपीट वैल्यू है, चाहे वो आज के हो या पुराने जमाने के. एंड टॉकिंग अबाउट विच, वी मस्ट प्ले अ पुराने जमाने का गाना. आफ्टर ऑल, जब बेटी ने कॉल किया हो अपनी माँ के लिए एंड शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, सो शाहीना की तरफ से उनकी मॉम के लिए हमें पता चला है कि शाहीनाज मॉम इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ. And what a better way to give her this sweet surprise from her daughter. So wishing Shahina's mom a very, very, very happy birthday, yaar. Aise bachche ho aur aisa rishta ho, to kyun na hum retro, jo ki hum usually play nahi karte hain, lekin once in a while, we definitely can.

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के।
2: This special retro song went out to Shaheena's mom. A happiest birthday to you.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888

0: a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
10: Put you on the right track. Tracks that put you on the right track.

0: This is Gupshup Gali with me too. Want to make sure that you all are aware of this wonderful, amazing place, which is called Malabar Gold and Diamonds, which is on Preston Road in Frisco, ladies and gentlemen. Aapke sare jo wo blinking needs and sparkling jo dreams hain of getting just the right thing for your special day or gifting somebody that. Beautiful rings, earrings, dazzling necklaces, leke, contemporary diamond style jewelry, everything.
1: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
8: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
9: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
10: Tracks that put you on the right track.

बजरंगी भाईजान, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ. और जी हाँ, जो इनाम जीता वो है हमारे श्याम जोशुआ, जिन्होंने जीता फॉर दिस प्लेस कॉल्ड डी वाइब रेस्टोरेंट एंड फॉर द रीजन दैट ही गेव मी द राइट आंसर. और डी वाइब रेस्टोरेंट जो कि फूडिस्तान के अंदर है, विच इज इन ऑपरी, फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस. और यही तो हमें चाहिए होता है कि अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़े, एक ही जगह पे सब मिल जाए. एंड गेस व्हाट, दे ऑफर ए लोएस्ट प्राइस मैच ऑन ग्रोसरीज एंड आल्सो फ्री डिलीवरी टू ऑर्डर्स ओवर जस्ट $30. 5 miles के रेडियस में वो फ्री डिलीवरी करने को तैयार हैं अगर आपका ऑर्डर $30 से ज्यादा हुआ. एज सिंपल एज दैट. दैट इज ए मामा मिया सिचुएशन, सीरियसली. एंड व्हाई डू आई से दैट, आई हैव अ रीजन. क्योंकि मामा मिया ये जो फिल्म थी, ओ माई गॉड, आई एम सो ग्लैड टू बी टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि आज ही के दिन नहीं, एक्चुअली कल के दिन रिलीज हुई थी इन द US एंड इट गिव्स मी अ रीजन टू प्ले दिस सॉन्ग इन मेरिल स्ट्रीप्स वॉइस. इट विल बी क्वाइट अ प्लेजर, क्योंकि हम इस सेगमेंट में कुछ ऐसे गाने प्ले करते हैं जो इस टाइम फ्रेम में रिलीज हुई हों. ऐसा कहाँ हमें मौका मिलता है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई गाना हम प्ले कर सकें, ये तो कम ही होता है ना. बिकॉज दिस वॉज अ म्यूजिकल रोमांटिक, तो ये गाना हाउ केन आई नॉट प्ले.

0: party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
2: जीत उनकी होती है, जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
6: तो फिर
7: अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया.
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया.
9: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.senadainc.com today.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो.
15: बेटा, 95% आए?
16: हाँ मम्मी.
15: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
17: मेरा?
15: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
17: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
7: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
18: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
19: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक.

I don't know how many of you are aware of it. Ye ek lamba medley sa tha, which was a combination of many, many songs created by the one and only R.D. Barman sahab. Aur ye jo gana tha, it was a remake of that song, Mamma Mia by ABBA. And ye gana Subramaniam sahab ne mention kiya, to I couldn't resist but play for all of you. Kyunki pichle segment mein, jahan par hum baat karte hain, kuch aise filmon ke gaane sunwate hain, jo ki aaj hi ke din, ya isi time frame mein release hui. तो बस हम मामा मिया की बात कर रहे थे, दैट मेरिल स्ट्रीप फिल्म, एंड आई वांटेड टू प्ले ए हॉलीवुड सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज कहाँ मौका मिलता है हमें किसी हॉलीवुड फिल्म का गाना प्ले करने का, क्योंकि गाने ही इतने कम होते हैं हॉलीवुड फिल्म्स में. तो ये मौका मिला तो मैंने छोड़ा नहीं, और इसीलिए उसी से बात निकली और यहाँ तक पहुँची कि भाई उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही है. कई लोग कितने क्रिटिसाइज करते हैं, कितने सिनिकल होते हैं, कितने क्रिटिकल होते हैं अबाउट द फैक्ट कि कितने सारे जो हमारे देसी कंपोजर्स हैं ये हॉलीवुड के गानों से इंस्पायर होकर उन्होंने बनाया है. अब उन्होंने जो बात कही सुब्रमण्यम साहब की बात मैं कह रही हूँ, एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू. मे बी मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ वुडंट अग्री टू दैट, लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई 7 नोट हैं, और उन 7 नोट में घुमा फिरा के आप कितने ही अलग ट्यून्स निकाल लो, कहीं ना कहीं वो रिजेंबलेंस मिल ही सकता है आपको. और इसी को लेकर हाल ही में प्रीतम के गाने को लेकर पीछे पड़ गए थे लोग, एंड ऑल ऑफ दैट happened for the Cocktail 2 movie and all those things happened. But you need to know ki bhai wahi ek daira hai, 7 notes ka jo daira hai usi ke andar music banta hai, aur isme thodi bahut resemblance kuch gaano mein ho sakti hai. Aur jo gaane inspire kisi gaane se inspiration leke bane hain, ya yun keh lijiye remake ya reimaginations hain, wahan generally composers keh dete the. Wo ek zamana tha jab nahi kehte the ki logon ko कोई लेना देना नहीं होता था, तो इसीलिए नहीं कहते थे. आज के ज़माने में नहीं कहने की शायद गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल ही जाएगा. बट येस, आर डी बर्मन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉट एन अमेजिंग कॉम्पोजर, एंड इट वॉज माई प्लेजर टू प्ले इट फॉर यू. दिस इज गपशप गली विथ मी टू, लेडीज एंड जेंटलमैन. इस के साथ एक तार जोड़ना चाहती हूँ, और वो है ओवर थिंकिंग. कभी कभी हम ऐसी ना सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि यार उसने चुरा लिया, इसने ये म्यूज़िक चुरा लिया, वो म्यूज़िक. नहीं यार, टेक इट ईजी यार, चिल. गाना पसंद आया ना तो बस इन्जॉय.

एंड हम ना क्या करने वाले हैं, कुछ ओवर थिंकिंग की बात करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हम कह रहे थे ना कि म्यूजिक कभी कभी मैच कर जाता है किसी और के क्रिएशन के साथ, और वहाँ पे लोग यू नो स्टीलिंग द म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट दे स्टार्ट टैगिंग, एंड जैसे प्रीतम हाल ही में बहुत ट्रोल हुए थे उसके लिए. लेकिन हाँ, वही मतलब अगर आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हो मोस्ट डेफिनेटली या रिक्रिएट कर रहे हो, एक एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है, दैट्स इट. डोंट ग्रिल द पर्सन, यू आर इंजॉइंग द सॉन्ग that are being played, right? वो बहुत सारे गाने आपको कहीं ना कहीं किसी भी दुनिया के किसी कॉर्नर के दूसरे कल्चर से या दूसरे सिनेमा इंडस्ट्री से कोई ना कोई गाना शायद मिली जाए जो which has the same rhythm, which has a similar kind of tune or something, and then you say कि कंपोजर की अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, एंड देन द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स एंड इट टोटली गोज आउट ऑफ कंट्रोल ऑन सोशल मीडिया दीज डेज. पहले के ज़माने में तो ये सब नहीं होता था, लेकिन वही जैसे कि मैं कह रही थी ना, हमारे एक लिसनर ने कहा कि भाई नोट्स तो साथ हैं, आप धुन कितनी ही अलग बना लोगे, यू नो. सो येस, डू रिमेंबर दैट. ओवर थिंकिंग की बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ओवर थिंकर्स मेरे ख्याल से हैव अ यूनिक टैलेंट. दे कैन टेक अ कंप्लीटली नॉर्मल मंडेन सिचुएशन और उसे एक मैसिव कॉम्प्लेक्स सस्पेंस थ्रिलर अपने हेड में बना लेते हैं. और ये मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैंने भी कई बार किया है, कई दफ़े किया है ये चीज़. एक्चुअली आई स्टिल रिमेंबर, आई विल शेयर दिस हिलेरियस थिंग. हमारी एक आजे हैं जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई थी, एंड देन ही कॉल्स मी, एंड इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट ही कॉल्स मी, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज टॉकिंग टू हिम. आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिज शोज, लेकिन ये हमारी पहली बार बात हो रही थी. तो बातचीत के बाद आई वॉज एक्सटैटिक कि यार उनकी तरफ से कॉल आया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना. और फिर मैंने एक गाना लगाया, मैंने एक ना बड़ा रोमांटिक सा गाना, एक मतलब वो मेंशन करते हुए कि यू नो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस पर्सन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तारीफ की एंड ऑल ऑफ दैट आई सेड. एंड उसके बाद मैंने एक बड़ा ऐसा ना बड़ा चीजी सा गाना लगाया, एंड देन आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग क्या यार मैंने क्यों ये गाना लगाया. ये मैं ओवर थिंक करने लग गई कि यार क्या सोच रहे होंगे वो, यू नो ऑल ऑफ दैट, यू नो. सो मेरे ख्याल से आपके आपके लाइफ स्टोरी में भी ऐसे कई किस्से होंगे जहाँ पे आप अननेसेसरीली ओवर थिंक करते हो. तो आज उन ओवर थिंकर्स के लिए कुछ प्रवचन देना चाहती हूँ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: जमाना भी सुने यार, हमारे जो लिसनर है सुब्रमण्यम साहब, उनके पास एक और बहुत ही अमेजिंग ट्रिविया है दैट आई वुड लव टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. मैंने सोचा कि यार मैं अपने शब्दों में क्यों बोलूं जब सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस बैक. एंड एक जो आपने तार छेड़ी है उसी को हम कंटिन्यूड रखने वाले हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ट्रिविया हमारे साथ शेयर किया, तो आप जनता को भी बताइए.
1: मैं ये कह रहा था कि ऐसा लगता है कि गाने जैसे इंस्पिरेशन होते हैं बहुत सारे, एक ढूंढो 50 लाख मिलेंगे कि ये गाना वैसा लग रहा है, वो गाना ऐसा लग रहा है,
0: करेक्ट,
1: कॉपी किया है, टोपोड एंड दिस एंड दैट. गानों से गाने तो इंस्पायर होते हैं, लेकिन जो जिंगल्स होते हैं, दी एड सॉन्ग्स, दे आर आल्सो इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग्स.
0: यस,
1: बट देयर इज वन सॉन्ग दैट आई हर्ड व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय अ जिंगल. वो गाना है परदेश पिक्चर का ये दिल दीवाना, जो सोनू निगम का गाया हुआ है.
0: हाँ जी,
1: उसका जो अंतरा है,
0: हाँ,
1: अंतरे का जो पहले 4 लाइन है उसके बाद जो लाइन, जो क्लोजिंग लाइन होती है अंतरे की, वो ये है कि कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूं.
0: करेक्ट,
1: दिल
0: करेक्ट.
1: निर्मा वॉशिंग पाउडर की एड थी, मेरे ख्याल संगीता बिजलानी उसमें होती थी, बहुत पुरानी बात है.
0: बिल्कुल,
1: वो एड था कि पानी में रह के भी ये कंगले, ढेरों कपड़े धोए और ज्यादा खिले ये दिल.
0: क्या बात है. एंड टेल मी, यू फाउंड आउट योरसेल्फ, क्या आपने कहीं पे पढ़ा ये चीज?
1: नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने एक जगह पे सुना था.
0: अच्छा,
1: एक किसी रेस्टोरेंट में कोई आदमी गा रहा था.
0: अच्छा, तो ही मेंशन्ड. अच्छा,
1: बहुत साल पहले की बात है. Listen to a lot of music and then I know that
0: I can tell. For example,
1: there is a song by, I think, Neil Sedak. Uska gana hai, kya kehna ka gana hai, ya fir, when you need love.
0: Kya kehna, the title track. Yeah. I can already feel the resemblance between the two songs. Kya baat hai, sir?
1: Fifth Dimensions ke gaane hain. Haan ji. Bahut saare gaane hain. Ek dhoondo hazaar milenge.
0: Haan.
1: Roji sunte hain, roji gaane sunte hain. इसलिए मैं कह रहा था ना कि भाई जब म्यूजिक की ऐसी चीज है कि भाई कान में अगर आपने सुन लिया और आपको अच्छा लगा तो सुनिए.
0: सुनिए बस, दैट्स इट. सुब्रमण्यम साहब, इट वाज वंडरफुल चैटिंग विथ यू. और ये जो आपने जो ये इंटरेस्टिंग ट्रिविया दिया ना, ये मुझे बड़ा मजा आया. थैंक यू फॉर शेयरिंग विथ अस एंड कीप कमिंग. जब जब ऐसे कुछ आपके दिमाग में आए और बहुत जोरों से आए कि भाई ऐसे शेयर करना चाहिए, तो कर दीजिएगा कॉल. ठीक है,
1: फिर तो मैं आपके साथ फोन लाइन पे 24 घंटे लगा रहूंगा क्योंकि इतनी बातें आती हैं.
0: हाँ जी, आई नो, एंड इट इज सो अमेजिंग टू गेट ऑल दीज इनपुट्स फ्रॉम आवर लिसनर्स. तो कीप सेंडिंग इट माय वे. कभी आप शेयर करोगे, कभी मैं आपके होके शेयर कर लूंगी. ठीक है,
1: आई विल सर्टनली.
0: थैंक यू सो मच. वॉशिंग पाउडर निर्मा, आई लव्ड इट.

0: अगर ऐसे सब गाने सुन के आपका मन चंगा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मन चंगा होना बहुत जरूरी है हेल्थ के चंगे रहने के लिए. लेकिन हेल्थ के चंगे रहने के लिए देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू मस्ट टेक केयर. मे वी सजेस्ट टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक, जो कि 13 साल से आपकी देख रेख कर रहा है, हमारी कम्युनिटी को देख रहा है. एंड दैट इज वाई वी वॉन्ट यू ऑल टू नो देर ब्रांड न्यू लोकेशन, देर सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. इट इज लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लुनॉक्सी मेडिकल brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services all under one roof, ladies and gentlemen. Open 7 days a week, subah ke 8 baje se raat ke 8 baje tak. This is really convenient, I'm sure, for people working. They can go after their office hours or maybe cater to their health and doctor visit right in the morning as well. Walk in anytime, appointment ki zarurat नहीं है. सो वंस अगेन लुनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को, डू चेक इट आउट. वंस अगेन थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ट्यूनिंग इन. ओवर थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जो हम पिछले सेगमेंट से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि अगले सेगमेंट तक ये ओवर थिंकिंग की बात जाएगी. सो दिस ओवरलोड ऑफ ओवर थिंकिंग हम मेक श्योर करना चाहते.
1: मोमेंट्स डोंट फेड, दे एको लाइक अ मेलोडी दैट नेवर लीव्स यू. एंड इन दोस मोमेंट्स व्हाट यू वेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मेलोडी. वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस. PMJ Jewels, timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
5: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
6: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी problems solve कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो. विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121. वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
11: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
12: Tarikh par tarikh, tarikh par tarikh.
13: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
11: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.
17: दिल्ली की धड़कन 104.9 एफएम फनेशियल रेडियो.
0: जी हाँ, 104.9 एफएम पे मैं हूँ आपके साथ टिल 12:30. अगले सेगमेंट में फीफा की बात होने वाली है और ये फाड़ू बात बस आज आखिरी दिन है हमारा, क्योंकि संडे को इट इज़ द ग्रैंड फिनाले एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे फीफा सेगमेंट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा. वो एक्साइटमेंट बंद हो जाएगा यार, बड़ा खाली खाली लगेगा. लेकिन उस खाली समय का हम अच्छे से कुछ यूज़ निकालेंगे, कुछ अच्छा सा सेगमेंट ढूंढने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ओवर द वीकेंड. दैट्स माय होमवर्क फॉर मी. अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा. बाकी रही बात सजेशन देने की, वो मैं भी आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि AG फिनटैक्स के साथ यू मस्ट कनेक्ट फाइनेंशियल और टैक्स सर्विस के लिए. फॉर ऑल डायनामिक बिजनेस ओनर्स दिस इज वेरी स्पेशली फॉर यू. दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. आपकी इंडिविजुअल नीड हो, एक स्टार्टअप हो या एस्टैब्लिश बिजनेस हो, ये आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं. दे हैव इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स, चाहे वो बुक कीपिंग हो, पे रोल अकाउंटिंग हो या बैंक एंड क्रेडिट रिकॉन्सिलिएशंस हो, टू यू नो प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. एनीथिंग यू हैव ए क्वेश्चन अबाउट और यू आर सीकिंग हेल्प, दे आर द आंसर टू इट फॉर श्योर. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस. AG फिनटैक्स इज द नेम एंड मिस्टर अनिल ग्रांथी एंड हिज टीम आर ऑलवेज वेरी कीन टू हेल्प यू. गेट इन टच विद देम लेडीज एंड जेंटलमैन. AGfintax.com इज द वेबसाइट और नंबर है 4699429888.
18: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

और ये 90s का जो जादू है ना वो कंटिन्यूड रहने वाला है विद द नेक्स्ट ट्रैक ऑल्सो. एंड गेस व्हाट, यू हैव टू गेस द गाना. लेकिन प्रायर टू गेसिंग द गाना आई वांट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि भाई तंदूरी फ्लेम में आपके लिए क्या क्या मिलता है. सो तंदूरी फ्लेम में आपके लिए है बिल्कुल स्मोकी तंदूरी कबाब्स, वेलवेटी करीज, फ्रेश हॉट नान और वो घर वाले होम स्टाइल खाने का जो एक तड़का है वो भी इनके तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट में खान डिशेस में आपको मिलेगा. ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स यू विल फाइंड देयर. सो गो टू दिस रेस्टोरेंट इफ यू आर सीकिंग समथिंग नाइस. घर के खाने से आप ऊब चुके हो तो जाओ, हिम्मत करके घर से निकलो. अगर घर से निकलना है या ऑफिस से, ऑफिस पे काम में बिजी हो तो टेक दैट ब्रेक एंड गो टू तंदूरी फ्लेम. एंड यार मतलब खाने में ऐसा जादू होता है ना कि आपके मन दिमाग सबको तरोताजा कर देता है. एंड ऑफकोर्स वी कैन टेक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल. फन एशिया रेडियो सुनते रहेंगे ना तो एकदम हमेशा बिल्कुल टनाटन रहेंगे आप. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. इट इज इन गालिन, जस्ट रिमेंबर दैट. एंड ऑल्सो रिमेंबर यार, मौसम का जो जादू चल रहा था वो अब थामे जाने वाला है क्योंकि अब जो है वो है बस आगे गर्मी ही गर्मी. यस, जितना भी थोड़ा बहुत शावर है वील हैव इट टू द वेस्ट ऑफ अस एंड उसके बाद सारा कुछ ड्राई आउट हो जाएगा. आज हमारा लो कुछ 90s में रहने वाला है. हाई दिस वीकेंड इज इन द मिड 90s एंड नेक्स्ट वीक विल बी हॉट. फीलिंग हॉट हॉट हॉट, वो गाना क्या था, वही वही. विथ हाईज ऑन मोस्ट डेज रेंजिंग फ्रॉम 100 to 102 लेडीज एंड जेंटलमैन. सो मंडे से नहीं, एक्चुअली हाँ एक्चुअली जो मैं देख रही हूँ कि आई थिंक ट्यूजडे से विल हिट द ट्रिपल डिजिट. मंडे को भी ट्रिपल डिजिट तक पहुँच ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर तो नहीं, हीट इंडेक्स की भी बात आ जाती है. एंड हीट इंडेक्स विल बी इन ट्रिपल डिजिट स्टार्टिंग संडे लेडीज एंड जेंटलमैन. तो जो फाइनल्स होने वाला है संडे को, जो वॉच पार्टी मैंने अपने घर पे रखी है, कुछ ठंडा ठंडा प्लान करना पड़ेगा टू कीप द एनवायरमेंट कूल बिकॉज फीफा के कारण गर्मी तो वैसे भी घर के अंदर भी बढ़ने वाली है. राइट, द फाइनल मैच ऑन July 19th संडे, जिसकी बहुत सारी बातें हम अगले सेगमेंट में करने वाले हैं. और इस सेगमेंट में ओवर थिंकिंग की बात हो रही है जिसके बारे में मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन कमिंग राइट आफ्टर दिस, गेस दिस सॉन्ग एंड टेक अ गिव अवे फ्रॉम मी. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. ये होता है ब्लाइंड फेथ इन योर आरजे. अगर आपको पता है कि मैं अच्छा सा गिव अवे आपको दूंगी और मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि मैं आपको शानदार सा गिव अवे देने वाली हूँ तो जरूर कॉल कीजिए बिकॉज मैं ये म्यूजिक लगाने वाली हूँ. यू हैव टू गेस द सॉन्ग. बहुत ही पॉपुलर गाना है भाई, फोन उठा लो.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये माधुरी दीक्षित के गाने के बाद एक गाना जो जस्टिफाई कर सकता है वो है हमारे इंडियन माइकल जैक्सन का, क्योंकि हम जानते हैं कि माधुरी दीक्षित शी सच एन आउटस्टैंडिंग डांसर कि उनको देखकर मजा आ जाता है. उनके उनको देखकर ना ऐसा लगता था कि हम भी कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठो तो समझ में आता था कि यार दिस इज ओनली अ माधुरी दीक्षित थिंग. लेकिन अगर यू नो एक्टर्स की बात की जाए तो एक नाम जो आता है दिमाग में वो है प्रभु देवा का. नोबडी कैन इमिटेट हिम फॉर श्योर. एंड इट इज आ प्लेजर टू टेल यू ऑल, शेयर विथ यू ऑल कि मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रभु देवा लाइव इन डैलस. लेडीज एंड जेंटलमैन, कितनी कमाल की बात है. और लॉरेन गॉटलिब के साथ सोनल भादुरिया, एलेक्सेंडर नोएल, हरिनी एंड नताशा शेरपा एंड सानवी मेघना फॉर दैट अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट दैट यू विल हैव एन अमेजिंग टाइम एट. आप जरूर जरूर अपने टिकट्स बुक कर लो यार, ये इट कॉल्स फॉर इट कि आप फटाफट कर लो, क्योंकि अगस्त 1 को है एट द टेक्सस ट्रस्ट सी यू थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. और बुक करने के लिए ना आपको कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के लिए नंबर की जरूरत होगी और नंबर है 2482333828. नो ओवर थिंकिंग अलाउड इन दिस कि यार उसके पहले तो मैं बहुत बिजी उस दिन कैसे एंड फलाना ना ढिमकाना एंड ऑल ऑफ दैट. नो, यू मस्ट गो. इट इज प्रभु देवा कमिंग टू डैलस. वी नीड टू गिव हिम ए डैलस वेलकम, ए टेक्सस साइज वेलकम. इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए. और वही एनर्जी देते हुए लेट्स गेट यू अ Let's get you a Prabhu Deva song right here.

0: जा ही तो रहा है समय, इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्योंकि ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रही थी यार, कुछ प्रवचन देने का सोच रही थी, मैंने सोचा कि इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट ए वेरी स्पेशल सुपर पावर टूडे, द आर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। अगर ध्यान से सोचो ना, तो ऑल ओवर थिंकर्स आर बेसिकली अवॉर्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर्स। हम एक सिंपल सी ओके या ये टेक्स्ट का जो मैसेज होता है उस पर पूरा 10 सीजन का सस्पेंस थ्रिलर बना सकते हैं, वो भी ऑल्टरनेट एंडिंग्स के साथ। इट इज एग्जैक्टली लाइक हैविंग 50 टैब्स ओपन इन योर ब्रेन्स ब्राउजर, और समझ ही नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड नॉइज जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, वो किस टैब से बज रहा है। हमारा दिमाग जो है ना, कॉन्स्टेंटली एक टाइम मशीन की तरह काम करता रहता है। या तो पास की कैजुअल कॉन्वर्सेशंस को रिवाइंड पर चला के रखता है कि यार 2 साल पहले क्यों भाई, पिछले महीने या पिछले हफ्ते उस आर्गुमेंट में जो बात जो कही गई थी ना, ये इसका मतलब क्या था। या फिर फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को फास्ट फॉरवर्ड करके हम इमेजिन करते रहते हैं। एंड इन ऑल दिस इंटेंस टाइम ट्रैवल, द एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट इज जस्ट बफरिंग ऑन द स्क्रीन। वुडंट यू अग्री टू दैट? मेरे साथ भी कितनी बार होता है कि क्या हो सकता है उसके बारे में सोच के हम आधे हो जाते हैं। बट रैशनली स्पीकिंग, ओवर थिंकिंग इजंट योर एनिमी। योर ब्रेन इज एसेंशियली जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, कि वो कुछ सिमुलेशंस रन कर रहा है, कुछ पॉसिबिलिटीज प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप आउटकम को थोड़े से संभाल सको, ऑफ गार्ड ना आप मोमेंट में किसी आओ। एंड इट्स एन एक्ट ऑफ केयर, बस थोड़ा मिसगाइडेड है। पर सच तो ये है कि यू कैन नॉट कंट्रोल टुमोरो बाय एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ टूडे। एक ये सिंपल सी दिमाग में अगर बात हमारी चली जाए ना, तो फिर सारे ओवर थिंकिंग का जो मर्ज है ना, ये ऐसे ही सही हो जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो यस, जितनी भी ओवर थिंकिंग है ना, आज के लिए मैं चाहूँगी कि आप उसको बिल्कुल घिस के ख़त्म कर दूँ, बिकॉज दिस वीकेंड इज फीफा वीकेंड। एंड उसके अलावा ये वीकेंड ऐसा होता है, या हर वीकेंड कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें अपने अपनों के साथ कुछ वक्त मिलता है, अपने लिए भी वक्त मिलता है, तो उसमें ओवर थिंकिंग का ये चीज की तो कोई जगह ही नहीं रहनी चाहिए, है ना? दैट बींग सेड, लेट्स गेट यू गोइंग ऑन विद द फीफा सेगमेंट इन जस्ट बिट। थोड़ी ही देर में हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद द फीफा सेगमेंट। एंड पता है, मैं थोड़ी सी मायूस सा फील कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से कर रही थी एंड इसके बाद ये खत्म हो जाने वाला है इस संडे को। ये सारी चीजें सोच के ना बुरा तो लग रहा है, सच्ची कह रही हूँ। But we'll figure out a nice segment for you starting Tuesday.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
16: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
21: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
22: हाँ।
21: घर रिलोकेट करनी है?
22: हाँ।
21: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
22: हाँ भाई हाँ।
21: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
23: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
24: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
25: उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
26: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
27: Tracks that put you on the right track.

थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और इस आखिरी सेगमेंट में फीफा के बारे में बात करने वाले हैं. दिस फीफा फीवर सेगमेंट दैट वी स्टार्टेड सिंस जून ऑफ 11th of June. यही होता है कि जब आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो ना, बातें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन भावना वही है जो आपकी है. सीरियसली, इट्स गोना बी वन फैंटास्टिक वीकेंड. दिस वीकेंड इज गोइंग टू बी दैट एब्सोल्यूट फुटबॉल फेस्टिवल. शुरुआत होगी सैटरडे को जब मायामी स्टेडियम में यू नो फ्रांस और इंग्लैंड भिड़ेंगे फॉर द ब्रॉन्ज मेडल. फुटबॉल प्योरिस जो है ये कह सकते हैं कि थर्ड प्लेस गेम, इट साउंड्स क्वाइट वियर्ड एक्चुअली, इसकी क्या जरूरत है. इनफैक्ट यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन एबॉलिश देम बैक इन 1980, बट FIFA has kept this tradition alive for 90 years. And trust me, a podium finish in World Cup is still a massive deal considering ki bhai 48 teams ne participate kiya tha, right? Then comes the main event on Sunday at the New Jersey Stadium, the epic 2026 FIFA World Cup final jahan pe defending champions Argentina face karne wali hai Spain ko. And Spain has been an absolute defensive wall, setting a World Cup record with 6 clean sheets and conceding just one single goal all tournament. Lekin Argentina ke paas ek alag hi jadoo hai. Believe it or not, 19 goals jo unhone mare of their 12 of their 19 goals is tournament mein unhone jo lagaye hain, aap keh sakte ho, have come after the 75th minute. प्योर लेट ड्रामा जिसकी बात अगर कर लें तो ये अर्जेंटीना ये खिताब लेके जाएगी. और ये तो हमें सेमीफाइनल में भी नजर आया, राइट? 7 मिनट बचे थे जब उन्होंने 2 गोल किए और इंग्लैंड को हराया उन्होंने एंड पहुंचे हैं फाइनल्स तक. एंड अर्जेंटीना हैज वन द फीफा वर्ल्ड कप 3 टाइम्स, 1978 में, 1986 में एंड ऑफकोर्स 4 ईयर्स बैक इन द लास्ट वर्ल्ड कप इन 2022. अगर अर्जेंटीना जीतती है, दे विल बी द फर्स्ट टीम सिंस ब्राजील इन 1962 to successfully defend the World Cup crown. As for Spain, they won their first and only FIFA World Cup in 2010. To jaan laga dene wale hain for the final match to get that second title this weekend, this Sunday. And they are going to go against Argentina, the champions, the defending champions, right? By the way, internet is absolutely blowing up right now aur football fans ka gussa aasman chhu raha hai. Over 10 million people have signed an online petition on argentinaout.com demanding that the defending champions be kicked out of the 2026 World Cup. Ye viral campaign directly FIFA aur match officials ko accuse kar raha hai of bias, claiming they are actively favoring Messi and the Argentina squad. The massive surge in signatures was fueled by that highly controversial round of 16 jo kiske against tha, wo Egypt ke against tha, right? Because the petition is completely fan driven and holds absolutely zero legal authority, FIFA has taken no actions to disqualify Argentina. So yes, back to the bronze final and grand trophy final on Sunday jahan par Trump bhi honge, and Trump will join FIFA president Gianni in to present the trophy on Sunday, ladies and gentlemen. And I'm sure aapne apni team already decide kar li hai. And kyunki US nahi hai isme, to main bade aasani se keh sakti hu ki may the best team win.

You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. It is all FIFA that we are talking or Maidan Par. The ultimate corporate showdown is here, ladies and gentlemen. England lost to Argentina. And with that, Nike's last hope of the tournament also went out. Meaning Sunday's epic World Cup final between Spain and Argentina is exclusive and Adidas affair. Bahar se, this looks like a chance, right? But ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, प्योर स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है. ये जो किड डील्स है ना, उनकी बात कर रही हूँ. और ये किड डील्स आर डेकेड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स. सो स्मार्ट ब्रांड्स डोंट जस्ट बैक विनर्स, दे बैक ए स्प्रेड ऑफ टीम्स. नाइकी बेट नैरो ऑन मैसिव नेम्स लाइक फ्रांस एंड इंग्लैंड, जबकि एडिडास बेट वाइड अक्रॉस 14 टीम्स, इंश्योरिंग दैट इवन व्हेन द जायंट्स फेल दे स्टिल हैड टू स्टैंडिंग. हेक या, इसे कहते हैं स्मार्टनेस. Even the referees and the match ball on Sunday are strictly Adidas. And when we talk about the kit ki baat karte na, it includes the jersey, the shorts, the socks, shin guards, cleats, all of that. So Adidas is going to get all the spotlight on Sunday, ladies and gentlemen. And this brand rivalry ki jo baat hai na, ye bahut purani hai. You know, before taking you to the legendary story of 1970 World Cup, I would really like you to come along with me to 1948. Now, Dassler ब्रदर्स के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है? अगर नहीं तो हियर वी गो. अडोल्फ डैसलर और रूडोल्फ डैसलर, ये हैं दो भाई. सो आफ्टर जॉइंटली रनिंग द डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री इन देयर होम टाउन इन जर्मनी, कुछ आइडियोलॉजिकल और पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से दे स्प्लिट द कंपनी इन 1948. द बैटल बिटवीन पूमा एंड एडिडास इज रूटेड इन दैट बिटर सिबलिंग राइवलरी बिटवीन द ब्रदर्स. अडोल्फ उर्फ आदि भाई जो है हमारे, उन्होंने एडिडास क्रिएट किया और रूडोल्फ जो है उन्होंने पूमा क्रिएट किया. और दोनों ही बड़े शानदार चल रहे थे. नाउ लेट्स लुक बैक एट द लेजेंडरी 1970 वर्ल्ड कप, जब राइवल डैसलर ब्रदर्स एट पूमा एंड एडिडास मेड ए स्ट्रिक्ट पेले पैक्ट टू नॉट साइन द ब्राजीलियन स्टार पेले. लेकिन रूफी जो है, रूडोल्फ भाईजान जो है द पूमा फाउंडर, ये डील सीक्रेटली ब्रेक करके ही पेड पेले ए मैमथ अमाउंट ऑफ $120. आप इमेजिन कर सकते हो, इट वॉज अ मैसिव ह्यूज अमाउंट इन 1970 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और पेले के साथ क्या डील था, वो ये था कि मिडफील्ड के जब वो किक ऑफ करने वाले होंगे, उसके ठीक पहले ही नीड्स टू बेंड डाउन एंड स्लोली टाई हिज पूमा बूट्स, मेकिंग द ग्लोबल कैमरा zoom in on the Puma logo. That was the game they played. And there is this

मेसी ने लमीन यमाल को गोदी में लिया हुआ है, एक बाथटब वाला भी है. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्ली सीन दैट पिक्चर एंड इट इज गोइंग वायरल फॉर ऑल द गुड रीजंस, लेडीज एंड जेंटलमैन. कैन यू इमेजिन, द शूट वॉज पुट टुगेदर फॉर एन एनुअल चैरिटी कैलेंडर बाय द लोकल लोकल पेपर, न्यूज पेपर दैट इट वॉज डीआरओ स्पोर्ट, एंड यूनिसेफ ने ये कुछ किया था. और यमाल की फैमिली हैड एंटर्ड लोकल यूनिसेफ रैफल फॉर अ चांस टू टेक अ फोटो विद ए बार्सिलोना प्लेयर. And guess what? They ended up winning, and it was completely by chance that they were paired up with Messi. And that photograph, जो कि Monfort ने, Joan Monfort ने लिया था, उन्होंने बताया था कि it was quite awkward for Messi to hold the baby, क्योंकि उनको एक तो पता नहीं था कैसे पकड़ना है इतने छोटे से बच्चे को, और वो बड़े शाय किस्म के भी थे उस टाइम पर. लेकिन guess what? 19 साल के बाद, 19 साल के यमाल from Spain, Lamine Yamal, he's going to play against the same Barcelona player from Argentina this Sunday at the World Cup. I mean, seriously, what are the odds of that? Matlab, kamal, sachi, destiny bina plays in mysterious ways.

0: Well, as I said, may the best team win. With that, I am inching towards the end of my show. And Rimita, aapke liye lekar aa rahi hai ek entertaining show. This is me too, signing off for the day.
1: Heere moti, main na chahun.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो. अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी, कॉन्टैक्ट द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
8: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली.
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
10: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को. कॉल 972-666-1181. मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

लाइट्स कैमरा एक्शन एंड नमस्ते DFW. मैं हूँ आपकी माशूका रमिता एंड वेलकम है आपका आप सबके फेवरेट फिल्मी फ्राइडे में सिर्फ और सिर्फ अनीशा रेडियो 104.9 FM पर. और फ्राइडे सिर्फ एक दिन नहीं है भाई लोग, ऑफिस वालों के लिए ऑब्वियसली वीकेंड का काउंटडाउन ही है, मूवी लवर्स के लिए नए रिलीजेस का दिन, और हमारे जैसे आपके और मेरे जैसे बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड मैं एक इंसान को समझती हूँ क्योंकि जो बॉलीवुड लवर्स हैं उन पे कूट कूट के बॉलीवुड भरे होते हैं, जजमेंट डे होता है बॉलीवुड के लिए क्योंकि हर फ्राइडे किसी फिल्म की किस्मत लिखी जाती है. महीनों की मेहनत, करोड़ों का बजट, एक्टर्स की एक्सपेक्टेशन, सब कुछ सिर्फ एक दिन में ऑडियंस के हवाले हो जाता है. और इसीलिए फिल्मी फ्राइडे यानी कि मेरे शो में उसी में भी सिर्फ एक वो ना एक म्यूजिक शो नहीं है ये, इसमें बहुत कुछ होता है. आपका बॉलीवुड रैप होता है, आप हम बात करते हैं अबाउट द लेटेस्ट रिलीजेस, लास्ट वीक रिलीजेस, न्यू रिलीजेस, OTT रिकमेंडेशंस, बहुत कुछ, और बीच बीच में जरूर आपके फेवरेट बॉलीवुड सुपर हिट्स. तो अगर पूरा हफ्ता मीटिंग्स, डेडलाइंस और ट्रैफिक में निकल गया, डू नॉट वरी, अगले ये जो 2 घंटे हैं आपके और मेरे बीच में बॉलीवुड का पूरा रिकैप मैं करने वाली हूँ ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. एंड लेट्स स्टार्ट विद सम लेटेस्ट म्यूजिक.

12:44 p.m. by the studio clock, and you were listening to back-to-back two zabardast music from the movie Alpha, which released last week. Aur agar aapne pure hafte Bollywood se disconnected the, to chaliye sirf 2 minute mein aapko pura update de deti hu. To sabse pehle baat karte hain Alpha ki. I know 2 hafte pehle release ho chuki hai. The movie is in its second week aur abhi bhi it's struggling at the domestic box office, यानी कि इंडिया में, और सेकेंड वीक में इसका रफली कलेक्शन है 8.4 करोड़, दैट इज इन द वीक टू, ब्रिंगिंग इट्स टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन टू अराउंड 56.8 करोड़. अभी अब तक आपने अगर नहीं देखा है तो और 2-3 हफ्ते वेट कर ही जाएंगे. आपके फेवरेट OTT में इट विल बी गेटिंग रिलीज, क्योंकि भाई मजा नहीं आया. इतने एक्शन पैक्ड, इतने सारे and most importantly, we have Alia Bhatt in it, come on, along with the cameo of the Greek god Hrithik Roshan. But kuch kamal nahi kar paya ye movie. To matlab, I don't know, I mean, what is lagging in this spy universe of Yash Raj movies? Yaar, ho gayi thi hit ek do baar, 2-3 superstars ke saath apne jab movie banayi thi, but no, this did not create the magic we were all expecting. Aur chaliye, pichle hafte jo release hui film about Dhamaal 4, wo bhi theaters mein is still there. Aur सच कहूँ, क्यों, धमाल फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी बात यही है कि कोई लॉजिक नहीं होती है. जब आप थिएटर में एंटर करते हो, लॉजिक बाहर, बस हंसी लेके बाहर निकलिए, क्योंकि कभी कभी लाइफ को भी वैसे ही ट्रीट करनी चाहिए. हर चीज़ लॉजिकल नहीं होती है यार, और धमाल 4 भी वैसे ही आपको स्लैपस्टिक कॉमेडी करते गए. और still now, I mean, today, by the end of 1 week, it has crossed the 100 crore net mark in India. Matlab, commercial success ke bawajood, film ko mixed to negative reviews mil rahe hai from the critics. So, directed by Indra Kumar, this ensemble cast, yani ki Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi, and Javed Jafri, still are there clinging on to the थिएटर्स दिस वीक. पता नहीं अगले हफ्ते तक रहेगी या नहीं रहेगी. तो अब तक नहीं देखा तो वीकेंड का प्लान विद धमाल 4 यू कैन ऑल्सो मेक. यू लिसनिंग टू फिल्मी फ्राइडे विद मी रमीता, ओनली ऑन 104.9 FM.

अगर आप डाई हार्ड अर्जेंटीना अर्जेंटीना के फैन है तो संडे से पहले ये गाना विच इज फ्रॉम द मूवी धमाल 4 जरूर स्पैनिश प्लेयर्स को सुना दीजिएगा. वो लोग शौक से मारे ऐसे डिसहार्टेंड हो जाएंगे और नहीं खेल पाएंगे यार. यू आर लिस्निंग टू 104.9 FM फनीशर रेडियो. दिस इज फिल्मी फ्राइडे एंड येट अगेन जो कि मैं कहना चाहती थी कि दैट वॉज द फेमस बेला चाओ रेंडिशन फ्रॉम द मूवी धमाल 4 रिलीज्ड लास्ट वीक. चलो ये तो गई बात पुरानी. इस वीक का क्या, इस वीक बॉलीवुड में तो कुछ खास रिलीज नहीं है. और क्यों नहीं है उसका जवाब मैं आपको देने वाली हूँ इसी लिंक में, क्योंकि आज रिलीज हो रही है क्रिस्टोफर नोलन की मच हाईली एंटिसिपेटेड सिनेमैटिक अडेप्टेशन ऑफ होमर्स एंशिएंट ग्रीक एपिक द ओडिसी. अब इसके बारे में अलग से क्या ही बताओ. अगर आप मूवी लवर है, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं, उनके मूवीज़ की फ़ैन है, तो सब कुछ साइड में रख के आपका फ्राइडे का प्लान आईमैक्स में ही बनाना, क्योंकि दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द यूनिवर्सल पिक्चर. और ये जो क्या ही मैं कहूँ, इट्स अ 172-मिनट फिल्म मूवी स्टारिंग मैट डेमन एज द कनिंग किंग ऑफ इथाका ऑन हिज 10-year जर्नी होम अलॉन्गसाइड विद एना हाथवे एज पेनेलोपी एंड टॉम हॉलैंड. अभी स्टार कास्ट के बारे में अलग से कुछ कहने का कुछ नहीं है, डायरेक्टर के बारे में कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं है. म्यूजिक तो हैंस ज़िमर के ही होंगे, बट आपको अगर इसकी एक्सपीरियंस लेनी है then it is your recommendation of this week, The Odyssey, which is releasing today at the theaters.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
4: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
3: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
4: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Har bhai super hit.
1: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
3: Excuse me. It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
3: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: Aaja meri gaadi mein baith ja.
6: Baith jaun? पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
6: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

पति पत्नी और वो दो से थी ये गाना फ्रॉम आई मीन विच गॉट रिलीज लास्ट वीक. नहीं, थिएटर्स में तो काफी पहले रिलीज हो चुकी थी. लास्ट वीक इट रिलीज इन द OTT. यानी कि अब चर्चा होने वाली है कि इस हफ्ते, इस वीकेंड आप कौन से OTT रिलीज से अपना वीकेंड बिताएंगे. अब ऑनेस्टली मुझे सच में बात बताइए एक, कि आप क्या उन प्रतिशत लोगों में से बिलोंग करते हैं जो कि थिएटर का वेट, मतलब थिएटर के बाद भी सिर्फ OTT का वेट करते हैं कि ये कब मूवी OTT पे आएंगी और तब आराम से घर पे AC चला के अपने कंफर्ट जोन में ये मूवी घर वालों के साथ एंजॉय करूँगा. यार इतने सारे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं ऑलरेडी, क्यों थिएटर में जाके अलग से देखेंगे, थोड़ा वेट कर लेते. उन लोगों में से अगर है आप तो ये वीकेंड आपका ही है. जैसे कि मैंने कहा कि पति पत्नी और वो दो वो गॉट रिलीज्ड लास्ट वीक, साथ साथ पेडी रिलीज्ड अलॉन्ग विद इक्का विच यू कैन स्टिल वॉच इन योर OTT प्लेटफॉर्म्स. अलॉन्ग विद दैट प्रीतम एंड पेड्रो विच इज एन एक्शन पैक्ड इन्वेस्टिगेटिव कॉमेडी एंड दैट्स अ न्यू जॉनर बाय द वे. इट स्टार्स अर्शद वारसी एंड राजकुमार हिरानीज सन इन इट. येस आई एम गोना से राजकुमार हिरानीज सन बिकॉज दिस गाय इनिशियली इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस बट ही स्टिल हैज टू प्रूव हिमसेल्फ टू मेक हिज मार्क इन दिस इंडस्ट्री. और बहुत ही जोकिंगली अर्शद वारसी ने यह भी कहा है कि यू नो ही हैज लॉन्च्ड हिज फादर यानी कि राजकुमार हिरानी विथ हिज फिल्म द मुन्ना भाई सीरीज एंड नाउ ही इज लॉन्चिंग हिज सन वीर हिरानी एज वेल. सो प्रीतम एंड पेड्रो यू कैन वॉच ऑन द OTT विच इज स्टिल देयर. अलॉन्ग विद दैट दिस वीक माँ इंती बंगारम समंथा रूथ प्रभुज रीसेंट एक्शन थ्रिलर इज नाउ अवेलेबल एंड इज रिलीजिंग टूडे. सो इफ दिस इज योर वीक इन वॉच देन मुझे जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीक के आप कितने एंजॉय किए इस थ्रिलर को दैट इज माँ इंती बंगारम. एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड Obsession in theaters, you can stream it this week. That is Obsession releasing in an OTT platform this week. So, agar fir se us daur se guzarna hai, then all the best. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita.

कौन कहता है पूरा नहीं होगा। अगर दाल मखनी और ढाबा स्टाइल चिकन खाने का मन हो रहा है सुबह से, तो वो मनोकामना मैं पूरी करने वाली हूँ इस घंटे के अगले 5 मिनट में। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो, दिस इज फिल्मी फ्राइडे विद मी रमिता। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मन कर रहा है फ्रॉम द रेस्टोरेंट फ्लेवर लाउंज, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगला गाना डिटरमाइन करेगा कि आप जल्द से जल्द नंबर डायल कर पाएंगे कि नहीं, मुझे सही आंसर दे पाएंगे कि नहीं, और ये गिव अवे जीतेंगे कि नहीं। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555। कॉल मी एंड टेल मी जल्दी कि ये जो गाना अगला प्ले करने वाली हूं कौन सी मूवी से है, और एटलीस्ट दो एक्ट्रेसेस के नाम मुझे बतानी होंगी आपको, और जीत जाइए दिस फ्लेवर लाउंज गिव अवे ओनली ऑन Phoenicia Radio. Studio number again is 972-235-5555.

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो right now, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटिंग पे है तो क्यों खाती भाव।

0: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. Or Jiha. This is from the movie Veere Di Wedding and starring Kareena Kapoor, Sonam Kapoor, Swara Bhaskar and Shikha Talsania. Or Sahi Jawab. You know, Sahi Jawab Dena is not important. Sahi Jawab Sabse Pehle Dena important hai is giveaways mein on Fun Asia Radio. Or Shaili Patel has done exactly that. So congratulations, Shelly. You have won this Flavor Lounge giveaway, which consists of either a dal makhani or a dhaba style chicken curry from the restaurant Flavor Lounge located near the Malabar Gold and Diamond Complex in Frisco. So jaiye, is weekend ka plan to filhal ban gaya. Lunch ya dinner jabhi bhi aap karne jaoge. And very important, this offer or this giveaway is for dine-in only. So, jabhi bhi aap jaoge na Flavor Lounge mein, aap apna meal enjoy karne ke saath saath meri yaad to zarur karna. Aur Fanisha ke baare mein do teen achhe words apne dimaag mein, dil mein kehte hi rehna. Kya kar sakte hai? We are your entertainer throughout the day. You're listening to Fun Asia Radio. Bane rahiye. I'll be back after a short, chota sa break.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
6: Samasya ka pakka samadhan.
5: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

37 minutes past 1 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Filmy Friday with me, Rimita. Enough of rolling R's. But it's time for the Filmy Flashback of the show. So, chaliye le chalti hu main aapko 1994 mein. Ooh, all the millennials are now intrigued. Ji haan. Movie ka naam is Andaz Apna Apna. Aur इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम मतलब वो ये ना कदर तब नहीं होती जब वो फिल्म रिलीज होती है. इट्स अ कल्ट मूवी, कल्ट क्लासिक कॉमेडी नाउ. बट क्या आपको बताए कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो पिट चुकी थी. एंड राजकुमार संतोषी द डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैड अ ह्यूज लॉस बिकॉज उनकी स्टार कास्ट इतनी हैवी थी. आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, आई मीन इससे ज़्यादा हम क्या ही और मांग सकते थे. उसके अलावा परेश रावल भी थे, शक्ति कपूर भी थे. यू नो, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी और इतनी मतलब क्लासिक कॉमेडी होने के बावजूद भी पिक्चर पिट गई थी. अमर, प्रेम, क्राइम मास्टर गोगो, तेजा, हर कैरेक्टर लेजेंड बन गया. और आज 30 साल बाद भी लोग इस मूवी के डायलॉग्स कोट करते हैं. आई मीन डे टू डे लाइफ में आपको तो पता नहीं, बट मैं और मेरे दोस्तों में हम चर्चे में हमारे फिल्मी डायलॉग्स ही रहते हैं. या तो ये सिनेमा का मैजिक है कि हर ब्लॉकबस्टर रिलीज के दिन ब्लॉकबस्टर की नहीं होती है, या फिर कुछ फिल्मों को ना ऑडियंस का प्यार धीरे धीरे मिलता है. तो माई क्वेश्चन टू यू इज, कौन सी ऐसी बॉलीवुड मूवी है जो आपको पहली बार देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब यू जस्ट हेटेड द मूवी, बट दूसरी या तीसरी बार देखकर आपकी फेवरेट बन चुकी है, या जैसे मैं बोलती हूँ ना, चरी है, थोड़ी थोड़ी चरी है. आई मीन द मूवी का फ्लेवर चरा है. अब मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ, अभी फ्राइडे है, कुछ मत समझो ऐसे, यू नो.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. और आपको अगर लग रहा है कि दिल को कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप रॉन्ग हो, गलत हो आप, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो हर घंटे हर मिनट हर पल काम करता है. इट वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. सो अपने दिल का ख्याल रखो. रोमांटिकली हर वक्त सोचने की जरूरत नहीं है. इतना फिल्मी फ्राइडे, आई अंडरस्टैंड इट इज़ फिल्मी फ्राइडे, बट इतना भी फिल्मी बनने की कोशिश या जरूरी नहीं है. दिस इज अबाउट मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड अवॉइडिंग टोबैको. एंड दैट इज, आई मीन, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन सिंपली डू एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट. और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कह रहा है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज दे आर द टॉक ऑफ टाउन व्हेन इट इज अबाउट योर प्राइमरी केयर कंसर्न्स. आई मीन प्राइमरी हेल्थ इश्यूज, दैट इज ऑफ मैनेजिंग योर कोलेस्ट्रॉल, योर ब्लड प्रेशर. एंड हु एल्स देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर विल बी नोइंग इट बेटर, क्योंकि वहां पे आप एक पेशेंट नहीं है, दे आर एक्चुअली योर फैमिली एंड यू आर फैमिली टू देम एज वेल. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर इंटायर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज विथ यू. एंड आई डोंट नो आपके प्राइमरी केयर सर्विसेज जो डॉक्टर्स है आपसे, जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हो आपको देन ऑन देन उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं, बिकॉज एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर यू गेट द अपॉइंटमेंट ऑन द वेरी डे यू वॉन्टेड. अलॉन्ग विद दैट, 5 मिनट नहीं, 7 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरे के पूरे 30 मिनट तक आपका चेकअप आपके साथ, आपकी डॉक्टर की जो बातें होती है अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर एनुअल फिजिकल्स, अबाउट योर एंटायर वेलबींग, द डॉक्टर स्पेंड्स एन एंटायर 30 मिनट्स विथ यू. तो चाहे एंग्जाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल related liver concerns ho, vitamin B12 deficiency testing ho, which is very important for women especially, and for all other available health concern, Passion Health Primary Care is there for you. You can schedule your appointment today and call in the number 214-666-6259. That's 214-666-6259 to book your appointment, because Passion Health Primary Care mein your health is their passion.

खुद से आप कितना इश्क करते हो इसका प्रूफ तो हम आपको दे नहीं सकते या आप मुझे दे नहीं सकते, पर खुद का ख्याल कैसे रखना है, अपार्ट फ्रॉम पैम्परिंग योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरीथिंग, पुट एवरीथिंग एल्स असाइड, हाउ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट आर यू? इंडिपेंडेंट की बात करूँ या सिक्योरिटी की बात करूँ, ये सवाल ज़रूर है. बट अगर आपके फिनेंशियल फ्यूचर के बारे में आप सीरियस हो and you're thinking day or night how to protect your money, earning your money is not enough, saving is what it is, most importantly important. So if you're concerned about your future and financial future especially, then you should definitely contact AG Fintechs, which is one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States right now. Chahe aap individual ho, ek startup कंपनी के मालिक हो या एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हो, AG Fintechs ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स, फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन टू proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. Har tarike se about you and your business, AG Fintechs keep you finances organized, compliant and future ready. To unki jo team hai, which is trusted, efficient and committed to your success, AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. Jaise ki maine kaha about your financial future, if you're serious and concerned, take a call and speak to Anil Grandhi and his team. So the number is 469-942-9888. That's 469-942-9888. Or visit agfintechs.com today. This is Filmy Friday with me, Rumita. Bane rahiye and enjoy the beautiful music only on Phoenicia Radio 104.9 FM.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
6: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
5: Sach? Ya phir court decide karega?
6: Wait, what?
4: Yes, agar proper estate plan nahi hai, तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है, तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
9: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
12: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं ही तो.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
18: Arey sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
1: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

10 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. And this hour, it is time for the dialogue of the week. Har Friday, hum ek classic dialogue ko discuss karenge aur chota sa uske around game bhi khelenge. To aaj is dialogue, I mean, is week ka dialogue hai. That iconic dialogue, is hafte ka dialogue is... पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो कितना सिंपल डायलॉग है ना, लेकिन कितना पावरफुल. लाइफ में कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, प्लान फेल हो गया है, जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशंस मिस हो गया है, रिलेशनशिप्स नहीं चल रही है, लेकिन लेकिन लेकिन भाई लोग, पिक्चर अभी भी बाकी है, स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है. इसीलिए शायद ये डायलॉग इतना टाइमलेस है. तो आपको एक छोटा सा काम करना है, स्टूडियो का नंबर दबाना है. 972-235-5555 इज द नंबर ऑफ द स्टूडियो एंड यू नीड टू टेल मी कि ये जो आइकॉनिक डायलॉग है कौन से मूवी से है. और बताने पर आपको मिलेगा अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. तो आपको देसी स्टाइल पिज्जाज अगर खानी है, लाइक द तंदूरी चिकन पिज्जा विच इज माई पर्सनल फेवरेट, यू नो उसकी जो स्मोकी परफेक्शन है, आहा, तंदूर से स्ट्रेट आपके टेस्ट बड्स तक छूटती है. तो आपका अगर देसी स्टाइल पिज्जाज पसंद है, कॉल मी एंड टेल मी कि ये जो आइकॉनिक डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कौन से मूवी से है. एंड यू कुड विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को.

आई डोंट नो, आपको वो घनचक्कर मूवी का वो डायलॉग याद है कि नहीं, जहां पे बैक टू बैक सभी ये गलत जवाब दे रहे थे कि एक्चुअली गजनी में कौन सा खान था, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, कौन खान साहब थे इस गजनी में. एंड नीडलेस टू से इट्स अ फनी मोमेंट दैट द मूवी घनचक्कर स्टारिंग विद्या बालन एंड इमरान हाशमी हैड क्रिएटेड इन द मूवी. वैसे तो इट इज द परफेक्शनिस्ट आमिर खान. यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गजनी एंड यू आर लिसनिंग टू फिल्मी फ्राइडे, जहां पे आज मैंने यानी कि आपकी फिल्मी रमिता ने क्वेश्चन किया था कि ये जो डायलॉग था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कौन सी मूवी से है. अभी भी फोन लाइंस मेरे बिजी है, बट थैंकफुली आई गॉट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट कॉलर इटसेल्फ, एंड दैट इज शाहिना नूर अली. कंग्रेचुलेशंस, नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये विनर का नाम है. करेक्ट आंसर ये है ओम शांति ओम, और शाहिना वॉज द फर्स्ट वन हु हैज वन दिस गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. कंग्रेचुलेशंस, यू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड. यू कैन अवेल दिस एंड द फ्रिस्को लोकेशन ऑफ फन पिज्जा किचन.

और इसी के साथ साथ आज का फिल्मी फ्राइडे यहाँ पे रैप अप करते हैं. थैंक यू सो मच DFW. हर फ्राइडे मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप पूरे हफ्ते बॉलीवुड की एक भी खबर मिस कर दे तो फिल्मी फ्राइडे सुनने के बाद आपको लगे नहीं, अभी मैं अपडेटेड हूँ. म्यूजिक बदलता रहेगा, मूवीज बदलती रहेंगी, स्टार्स आते जाते रहेंगे, लेकिन कहानियां, उनका जादू कभी पुराना नहीं होगा. दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज फिल्मी फ्राइडे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. वीकेंड एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, एक अच्छी मूवी देखिए और याद रखिए कि लाइफ में हर दिन फिल्मी नहीं होता सब कुछ, लेकिन हर फ्राइडे जरूर फिल्मी होता है. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. मैं मिलूंगी अगले फ्राइडे इसी वक्त इसी जगह ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: ये तारा वो तारा हर तारा।
14: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

जी हाँ, सावन के महीने से हमने शुरुआत की है चिकन फ्रॉम द मूवी मिलन, लता मंगेशकर साहिबा और मुकेश साहब की खूबसूरत आवाजों में। अच्छा सावन, सावन से वैसे तो बहुत सारे गाने आजकल के दौर के भी याद आते हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा सावन से गाना याद आता है वो गाना जिसने मीका सिंह को ओवरनाइट स्टार बना दिया, और वो गाना था सावन में लग गई आग। और वही गाना आपके लिए मिक्स पॉट में अगला प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आपका कोई इवेंट आ रहा है, कोई ओकेजन है, जैसे कि एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन ऑफ एनी काइंड, या फिर आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं चाहती हैं, तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, दिस इज अ प्लेस विच विल एड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है प्रेस्टन रोड पे लोकेटेड है जी, फ्रिस्को में। योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड शाइन। तो हर पीस जो है वो खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, उसकी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़, हर पीस आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है वाली सिचुएशन है। एक्सपीरियंस कीजिए अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस एट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। एंड व्हाइल यू आर एट इट, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड देयर मोबाइल ऐप। आप मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ऐप डाउनलोड कीजिए फॉर लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स और भी बहुत कुछ उनके ऐप पे मौजूद है। सो गो टू योर ऐप स्टोर्स एंड डाउनलोड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यू ट्यून्ड इनटू मिक्स पॉट राइट हियर ऑन सुनहरी किरण।

And before this ke hum aage badhe, main aapko ye batati chalun ji that the views and opinions expressed in the live announcements that we do on our shows as well as the interviews that we take on our shows is paid advertisement and does not necessarily share the views of the radio station nor the RJ. Isi ke saath hum play kar rahe hain ya we are in the segment Mix Pot. Kuch naye gaane aur kuch purane gaane aur meri koshish hoti hai ki jo purana gaana aapke liye play kiya jaye usi se ya usse mujhe kaun sa naya gaana yaad aaya वो आपके लिए प्ले होता है अगर कोई आप पुराना गाना सुने और आपको कुछ एकदम से नया गाना याद आए तो मुझे कॉल करके बताइए 972-235-5555 आप मैं जो आपके लिए गाना प्ले करने लगी हूं दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट फेवरेट सॉन्ग्स टेकन फ्रॉम द मूवी अनामिका दिस इज बाहों में चले आओ

जी हाँ, खुद सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द मूवी अनामिका. अनामिका जी अपने टाइम की एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म थी. संजीव कुमार और जिया भादरी उसमें थे और इट वॉज डायरेक्टेड बाय रघुनाथन जलानी. और ये फिल्म जो है इट्स स्टिल सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ग्रिपिंग यू नो एमनीजिया ड्रिवन प्लॉट था इसका. एवरग्रीन म्यूजिक थे इसके अंदर, स्पेशली बाहों में चले आओ और मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, आपने जरूर सुना होगा. दो गाने तो बहुत ही ज्यादा हिट हुए थे. और लड़की होती हैं और उनको एमनीजिया हो जाता है और उसके बाद वो संजीव कपूर को अपना कुमार को अपना हस्बैंड समझने लगती हैं और फिर क्या होता है, यही सारी कहानी है फिल्म अनामिका की, रिलीज्ड इन 1973. लेकिन बाहों वर्ड या बाहों के जो गाना है या जो थॉट है उससे मुझे खामोशी का एक गाना याद आता है जो कि मनीषा कोइराला और सलमान खान पे पिक्चराइज था. वो गाना आपके लिए प्ले करूंगी, पर उससे पहले मैं आपको जरूर बताती चलूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं, यू नो, यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट और मेक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट opportunities or alternative investments, to be My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, is the perfect place for you to go. Whether you are, you know, chahe aap long term wealth plan karna chahte ho, retirement planning aap soch rahe ho, ya apne investment ke portfolio ko badhana chahte ho, My Time Equity aapko offer karti hai personalized solutions designed around your goals. कोई भी आपका सवाल है ये बात सुन के या आपका फाइनेंसेस के हवाले से कोई सवाल है तो माय टाइम एक्विटी को कॉल कीजिए. द नंबर इज 4697021272 इज द नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज mytimeequity.com. और वापस बैक टू द वर्ड, बाहें जैसे बाहों में चले आओ से मुझे याद आया खामोशी फिल्म का ये खूबसूरत ट्रैक. एंजॉय.

जी हाँ, खुलते बंद होते लबों की ये अनकही सुन रहे थे आप खामोशी फिल्म से. ये गाना पिक्चराइज्ड ऑन मनीषा कोइराला एंड सलमान खान. संजय लीला भंसाली की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू थी एंड डिस्पाइट बीइंग नॉट सो सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस उस वक्त जब ये रिलीज हुई थी, इट हैज स्टिल अचीव्ड अ मैसिव कल्ट स्टेटस. संजय लीला भंसाली जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे एंड यू नो ही हैज और ऐसा भी सिचुएशन आई कि कहा यह जाता है कि उन्होंने शायद इस मूवी का क्लाइमेक्स भी चेंज कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड पे. अदरवाइज संजय लीला भंसाली इसको डिफरेंट क्लाइमेक्स मूवी को देना चाहते थे. खामोशी फिल्म का एक छोटा सा किस्सा ये भी. और अब हम मिक्सपॉट के आखिरी ओल्ड गाने की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद ब्रेक एंड देन मतलब ओल्ड एंड न्यू एंड देन ब्रेक एंड देन वी विल एंटर इन टू किड्स जंक्शन. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू that this part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Chahe aap individual ho ya you have a startup ya phir you are an established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions jo ki aapki requirements ke around tailor kiya jata hai, from bookkeeping, payroll accounting and bank and credit reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एजी फिनटेक्स आपको. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर रेडी. ट्रस्टेड हैं जी, एफिशिएंट हैं, दे आर कमिटेड टू योर सक्सेस. तो एजी फिनटेक्स को अपना पार्टनर बनाइए इस फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्डिंग में एंड यू विल डेफिनेटली बी एक्सट्रीमली हैप्पी. यू हैव एनी क्वेश्चंस, गिव एजी फिनटेक्स अ कॉल. दैट नंबर इज 4699429888 is that number. Ya phir aap visit kar sakte hain unki website agfintax.com. Aur ab jo gana main aapke liye lagane lagi hu, that is taken from the movie Sangam. Bahut pyar se Mukesh sahab sawal kar rahe hain, bol Radha bol, Sangam hoga ki nahi?

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
3: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
6: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
7: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
6: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
8: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Samajh nahi aa rahi, ticket loo to kahan se loo?
10: It's Lawson.
9: Kisse baat karun? Sari jankari kaun dega?
10: It's Lawson.
9: Daddy, what is the law?
11: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
12: Hey, tumne kabhi insurance liya?
13: Liya.
12: Kabhi policy samajh bhi aaya?
13: Nahi aaya.
12: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर नो कंफ्यूजन नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772 That's 972-863-7772
14: Visit www.senadainc.com today
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
17: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun.

0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiya Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
4: प्लान या होप?
3: मतलब?
4: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
3: ओके, तो मेरा वाला होप है.
4: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
3: क्यों?
4: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
5: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com.
6: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
5: कॉल 9728971530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route. Rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
9: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

0: And with that, it is time now to head on to a short break. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे आज के चिल्लर पार्टी यानी कि समर फन आरजे मौजूद हैं एंड आई विल टेक हिम लाइव ऑन एयर एंड ही विल बी फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर मी एंड हिम टुगेदर विल को होस्ट किड्स जंक्शन फॉर यू. दिस इज चिल्लर पार्टी एक्सक्लूसिवली फॉर आर यंग.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
10: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. MLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
15: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time. One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
21: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
19: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
21: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
19: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
22: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets.
23: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
6: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin achha sa dinner karke aayenge.
6: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
12: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
6: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
13: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
14: मेरे कल वाले खाने में डोसा आने वाले खाने में डोसा
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश योर सर्च एंड्स हियर
15: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स क्रिस्पी डोसास फ्लफी इडलीज कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस
6: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन
16: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

राहुल वैद्य की आवाज में सुन रहे थे आप ये क्लासिक गाने का एक थोड़ा सा नया वर्जन। अच्छा जी, आपको बताएं, अब वक्त आ चला है आपके लिए एक गिव अवे का। दैट इज ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस। और सबसे पहले तो नियॉन कैक्टस के बारे में आपको बताऊं कि यू नो इट इज दिस इज अ प्लेस वेयर मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ताज़ा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस आर अवेलेबल, प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड चॉइसेस। सो सब कुछ वहाँ पे, मतलब आप जिस भी तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियन हो, हलाल हो, या और भी किसी भी तरह का आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो नियॉन कैक्टस पे आपको वो मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट, एवरीथिंग इज पैक्ड अप विद लवली वंडरफुल फ्लेवर्स। और वाइब की तो बात ही मत कीजिए, यंग, कलरफुल, मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी। इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, दिस इज द प्लेस फॉर यू गाइज टू हैंग आउट। If you are, you know, want to celebrate something with your family, then this is a place for you to hang out. This is perfect for, you know, family hangouts, and, you know, date nights, as well as your chill pill plan, which hota na, aaj hamara chill plan hai, wo wala plan. So, and on top of that, they serve curated cocktails, refreshing mocktails, as well as happy hour Monday through Friday. और स्पेशल डील्स तो इनकी हर रोज़ मौजूद होती हैं। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ $20 का गिफ्ट कार्ड फॉर डाइन इन ओनली। एंड दिस गिफ्ट कार्ड यू कैन विन, आई मीन ये $20 ऑफ होगा जब आप डाइन इन करेंगे वहाँ पे। और आपको मुझे ये बताना है, बहुत सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। आपको मैंने कल बताया था, बल्कि हम फनीजिया पे आपको बता ही रहे हैं कि प्रभु देवा आ रहे हैं कॉन्सर्ट लेकर। वो कॉन्सर्ट कब होगा ये सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि प्रभु देवा की डेट ऑफ बर्थ क्या है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट प्रभु देवा ऑन दिस कॉन्सर्ट दैट इज कमिंग टू योर एंड माई टाउन, दिस इज DFW। लेकिन मुझे प्रभु देवा की डेट ऑफ बर्थ बताइए और जीत लीजिए नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का ये गिफ्ट कार्ड, विच इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। 9722355555

और आपको बता रही थी कि प्रभु देवा आ रहे हैं डालस में जी. नाउ इट इज टाइम टू टेल यू हैं जी, बिल्कुल इंडियाज माइकल जैक्सन कहा जाता है उन्हें. एंड मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स प्रभु देवा लाइव टू यू इन DFW. और उनके साथ आ रही हैं लॉरेन गॉटलिब, साथ ही साथ सोनल, अलेक्जेंडर, हारिनी, नताशा एज वेल एज सानवी फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. मतलब इतने बड़े बड़े नाम, और प्रभु देवा तो एक अपने आप में है ही बड़ा नाम, लेकिन लॉरेन का नाम देख लीजिए, सोनल, अलेक्जेंडर, दे ऑल आर अमेजिंग डांसर्स. और जब ये सारे एक साथ आपको स्टेज पे नजर आएंगे तो क्या होने वाला है, इसको जानने के लिए आपको कॉन्सर्ट अटेंड करना पड़ेगा. बताती चलूं आपको कि आपके लिए ये कॉन्सर्ट आ रहा है August 1st को. सो अबाउट 14-15 डेज रह गए हैं. Saturday August 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर. सो नंबर फौरन नोट कर लीजिए. आपने एक टिकट खरीदना है, दो टिकट खरीदने हैं, ग्रुप टिकट्स खरीदने हैं, जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, या वैसे ही आपने कोई सवाल करना है, गिव देम अ कॉल 248-233-3828. वंस अगेन दैट नंबर इज 248-233-3828. सो वंस अगेन मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहा है प्रभु देवा लाइव इन DFW. प्राउडली मीडिया पार्टनर, प्राउड मीडिया पार्टनर Fun Asia Network. Always so happy to be media partners with such events.

अगर आप किसी ट्रक या फिर कार एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो यू नो हम सब जानते हैं कि इट ओनली टेक्स अ सेकेंड फॉर सच अ थिंग टू हैपन, बट दी रेपरकशंस आर लॉन्ग टर्म. बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है सिचुएशन विद द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, एंड अपनी सेहत, अपनी हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए. And let attorney Omar Khwaja handle the rest for you. They will fight your case for you, get you the best compensation that you deserve. And the best part is ke aapko kuch pay nahi karna until and unless you win the case. So it is a win-win situation for you. Is pareshani aur ek stressful situation mein rahat ka paigham hai ye. Omar attorney Omar Khwaja ko call kijiye if you or someone you know of is going through something like that. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number, or you can visit their website and book a free consultation. That is attorney Omar, OMAR, attorneyomar.com. Aur aapke liye main traffic update leke aayi thi, which was brought to you by the law offices of attorney Omar Khwaja. Lekin hamare paas koi incident report nahi hua hua is waqt, so that is in of course a very good news. So the roads of TFW are pretty much clear for you wherever you are going.

एंड विद दैट वी आर रैपिंग अप विद वेदर अपडेट. आज है जी फ्राइडे जुलाई द 17th 4:57 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकनी में इस वक्त है 91 degrees. However, it feels like 100 right now. दिन रहा पार्टली सनी और अबाउट 70% चांस ऑफ यू नो रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स रहे इधर उधर. हाईज इन द लोअर 90s. जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी इन द इवनिंग देन बिकमिंग पार्टली क्लाउडी विद लोज इन द मिड 70s. पोलन काउंट इज 2.3 विच इज लो. जबकि यूवी इंडेक्स इज 11 विच इज एक्सट्रीमली हाई. कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी. कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड. सनराइज आज का हुआ 6:29 AM पे जबकि आज का सनसेट होगा 8:35 PM. और इसी के साथ क्विकली आपको करेंसी अपडेट देते चलें जी. आज यूरो 0.87 पे ट्रेड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर. ब्रिटिश पाउंड 0.74. इंडियन रुपी 96.51. कैनेडियन डॉलर 1.40 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 277.95 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. जबकि नेपाली रुपी 154.49 पे स्टैंड कर रहा है. बांग्लादेशी टका इसी के साथ साथ 123 डॉलर्स एंड 24 सेंट्स पे स्टैंड कर रहा है. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट. टाइम मेरे पास कम है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा. पर आउंस इस वक्त गोल्ड प्राइस है जी $4,017.51 जबकि गोल्ड प्राइस पर ग्राम राइट नाउ इज $129.17. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में 96 सेंट्स का इजाफा हुआ जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $29.73 का इजाफा देखने को मिला. That's pretty much all that I have for you with your finance matters right here on Sunehri Kiran. I will see you on Monday. अब मेरा वीकेंड की छुट्टी. आपका वीकेंड. I hope you enjoy your weekend and have a lovely, lovely rest of your day. Navneeta आ रही हैं आपको करने entertained. Stay healthy, stay safe and enjoy your weekend.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
8: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. Chahe Olympic-style archery ho ya 10 meters indoor precision shooting. Focus, discipline, consistency. Frisco Precision Sports Academy, one and only in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
9: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-10.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
10: Beta, 95% aaye?
11: Haan, mummy.
10: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
12: Mera?
10: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
13: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: अरे यार, घर मिल गया।
17: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
17: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
13: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
18: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
19: इट्स लॉसन।
18: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
19: इट्स लॉसन।
18: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
20: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
21: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
22: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
21: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
21: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

Hey,

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. Thank God it's Friday, दोस्तों. 104.9 FM Fun Nature Radio सुन रहे हैं मेरे साथ. मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता. 5 से 8 ये जो वक्त होता है आपका और मेरा is the most happening and the most amazing time of my life. Friday की Friday क्योंकि मैं लाती हूँ weekend vibe जल्दी से. Saturday Sunday तो weekend होता है लेकिन Friday शाम से ही weekend शुरू हो जाए तो बात ही क्या है. Thank you and a big shout out to Kiran जिन्होंने इतना खास खास शो किया है. As always, हर रोज उनका एंटरटेनमेंट एक से बढ़कर एक हो रहा है और मैं आती हूँ फ्राइडे के फ्राइडे आपको एंटरटेन करने के लिए. आपकी होस्ट नवनीता, बने रहिए मेरे साथ 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट.

मस्त वाला गाना था ना, ये ब्रांड न्यू गाना है और इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन हो सकते हैं? दिल को छू रहा है थोड़ा सा, तो ये ऐसा है जो नज़दीक है दिल के। उनका जो म्यूजिक है ना कहीं छा ही जाता है। एंड ये जो है श्रेया घोषाल की आवाज़ थी जो बहुत ही खास थी। अ ब्रांड न्यू सॉन्ग है, वही मैं बोलना चाह रही थी। एंड दिस इज़ अ म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोहित्रा, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के, और ये म्यूजिक बनाया है कुछ प्रोडक्शन हाउस जिसमें अचिंत और अचिंत हैं। एंड बेसिकली स्वानंद किरकिरे का ही जो दिखने का तरीका है ना, और श्रेया घोषाल के गाने का, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा ने। सो ऑल इन वन, इट्स अ ब्यूटिफुल हार्ट टचिंग सॉन्ग। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एजा रेडियो मेरे साथ।

ये कौन फॉलो कर रहे हो वैसे फीफा? ओ माय गॉड, वर्ल्ड कप फाइनल! हमें तो डालस में रह के दिल से क्लोज ऐसे ही हो गया है, बट ग्रैंड फिनाले का बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले इसी संडे को है 3 बजे, और दिस वन अर्जेंटीना टेक्स ऑन स्पेन इन द फीफा वर्ल्ड कप 3 बजे, विच इज़ द ईस्टर्न टाइम, बिकॉज न्यूयॉर्क में होना वाला है, न्यू जर्सी स्टेडियम. और दिस फिनाले इज़ अ किक ऑफ हिस्ट्री इन द मेकिंग, फर्स्ट एवर 48 टीम फीफा वर्ल्ड कप, मेकिंग इट द बिगेस्ट वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. और अर्जेंटीना का मिशन है, द डिफेंडिंग चैम्पियंस आर चेजिंग बैक टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल्स, समथिंग अचीव बाई ओनली अ हैंडफुल ऑफ नेशंस, है ना? अर्जेंटीना ने कमाल कर दिया है. स्पेन का ड्रीम है, दे आर एमिंग टू लिफ्ट देयर सेकेंड फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द हिस्टोरिक जो उन्होंने 2010 में जीता था. अ न्यू ट्रेडिशन हो चुका है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री द विनिंग टीम विल रिसीव फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप रिंग्स इन एडिशन टू द फेमस ट्रॉफी. तो वो तो एक दिखाने वाली बात हो जाती है. स्टार स्टडेड क्लोजिंग सेरेमनी भी होने वाला है, विच इज़ दिस संडे. द प्री मैच सेलिब्रेशन विल फीचर ग्लोबल एंटरटेनर्स विद जेनिफर हडसन परफॉर्मिंग द US नेशनल एंथम. और क्राउड, ओ माई गॉड, आप जाने वाले हैं क्या? क्राउड सुनेंगे ना, 6.7 मिलियन फैंस टूर्नामेंट्स अटैच है, मेकिंग इट द मोस्ट अटेंडेड वर्ल्ड कप एवर. मज़ा आ रहा है, स्टार स्टडेड है, सेलिब्रिटी लुक है, एवरी यू नो प्लेयर लुक सो गुड. हमारे बड़े बड़े टीवी में जब ये बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स, क्यों फुटबॉल बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए, फीफा है, हम कैसे बोल सकते, देसी देसी टाइप ही बोलेगा, पर देखने के लिए वी ऑल आर टोटली हंग अप. सन्नाटा होने वाला है रस्तों पे, क्योंकि सब ग्लू ऑन होंगे टीवी पर, और जो मैच देखने जा रहे हैं तो भी सन्नाटा होने वाला है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पब्लिक वही होगी, है ना?

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
5: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया.
7: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
11: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
13: स्वागत है आप सबका 104.9 FM FunAsia Radio. बड़ी बहुत ही खूबसूरत शाम. एक्चुअली थोड़ी सी बारिश होने की वजह से द फील लाइक फैक्टर ऑफ द हीट हैज रिड्यूस. और कभी कभी मुझे लगता है लोग बोलते हैं 100 डिग्रीज टेम्परेचर है, फील्स लाइक 105. तो यार फील लाइक तो मेरे पर छोड़ दो, मुझे क्या फील हो रहा है. मुझे शायद 150 डिग्री का फील लाइक फीलिंग है. आपको हो सकता है वो 75-95 फील लाइक हो. बहुत जनों को गर्मी अच्छी लगती है और फील लाइक उनके लिए 110 नहीं होता होगा. आई मीन यू शुड बी टेलिंग द टेम्परेचर व्हाट इट इज़, बट फील लाइक इज सो रिलेटिव है ना. बस हमारा फील लाइक आपको कैसे फील लाइक वैसा है, सोच के दिखाइए, बताइए मुझे।

though you just say that I have an attorney on my side who will fight my case and he will help me to get the compensation that I deserve. अगर कोई कार एक्सीडेंट में आप फंसे हो या फिर स्लिप एंड फॉल का कोई इंसिडेंस हो, सो व्हाट? इट इज़ नॉट दैट यू अलोन, यू हैव समबडी, एंड दैट इज ओमर ख्वाजा. दे डील विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड टेक अवे ऑल योर स्ट्रेस. और फिर क्या है, उनका ये दावा है कि वो कॉम्पेंसेशन तब तक नहीं लेते जब तक आप जीत ना जाए, आपको पेमेंट ना मिल जाए, आप के पैसे पहले फिर उनके. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046, या फिर विजिट कीजिए attorneyomar.com. सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजा रेडियो, यहाँ पर आपका और मेरा सिलसिला ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग. खबर है भाई, खबर है, कुछ बॉलीवुड की खबर है, सही सही वाली खबर है, मस्त वाली खबर है, लेकिन वो खबरें इस गाने के बाद.

ऑन अ फनी नोट, आपको कभी कोई बोले ना आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा, कह दीजिएगा आप आपके पास उमर ख्वाजा है। होता है कि जिंदगी में, लाइफ में हादसे, और वो हादसा अगर आपके साथ हो जाए और कोई आपके साथ बोले हो गया आपका क्या होगा जनाबे आली,

ब्यूटीफुल 104.9 एफएम फनी जॉय रेडियो पर ये इश्क है, ये इश्क है खबरों का सिलसिला। अगर आप जाने तो बताएं, जिंदगी में वापस से ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। बॉलीवुड अभी ज़ॉम्बीज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड दे आर कमिंग, ज़ॉम्बीज आर कमिंग इवन इनटू बॉलीवुड। और ये नेक्स्ट बिग ट्रेंड है। रणवीर सिंह ने अगर ये ट्रेंड को पकड़ लिया है और कार्तिक आर्यन ने भी पकड़ लिया है, मतलब इट्स बिग, राइट? रणवीर सिंह अपकमिंग ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय कुड फेस कॉम्पिटिशन विद कार्तिक आर्यन ओन ज़ॉम्बी फिल्म विच इज़ रिपोर्टेडली एमिंग फॉर एन अर्लियर रिलीज। तो ये दोनों की दोनों है हॉरर, ज़ॉम्बी हॉरर। ओह माय गॉड, आई कांट सी ज़ॉम्बीज, बट व्हाट हॉरर है, आई कांट सी ज़ॉम्बीज, बट दे आर, इमेजिन रणवीर एज अ ज़ॉम्बी एंड कार्तिक आर्यन एज अ ज़ॉम्बी, आई डोंट इवन वॉन्ट टू इमेजिन दैम, बट दे आर कमिंग एज ज़ॉम्बीज। कॉमेडी है, हॉरर है, तो फिर जो फैंस हैं उनके, जिनको ज़ॉम्बी भी पसंद है, रणवीर भी पसंद है और कार्तिक आर्यन भी पसंद है, उनके लिए तो ये खबर है भाई, खबर है। ये दोनों ज़ॉम्बीज एक साथ आ रहे हैं। तो इस खबर के बीच में और भी खबर है, बट वो खबर मैं इस गाने के बाद आपको बता रही हूँ कि खबर है, जो खबर है वो क्या खबर है। रणवीर सिंह फॉर यू इन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव इट।

0: रणवीर सिंह गहरा हुआ 104.9 FM फानेजा रेडियो सुन रहे हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ रणवीर सिंह अब जॉम्बी बन के आ रहे हैं। तो खबर है भाई, खबर है, खबर की दुनिया का एक और सिलसिला आपको बता दूं। अभी ना बहुत ज़ोर से वायरल हो गई हैं ये दीज टू गर्ल्स एंड दे आर वायरल बिकॉज ऑफ अ डांस दे डिड, सानिया मल्होत्रा और नाइला ग्रेवाल। स्पॉटलाइट उन्होंने जीत लिया मुंबई फैशन इवेंट में, उन्होंने दोनों मिलकर डांस किया, धूम मचा लिया और चिकनी चमी लिया। आप जब जाके सर्च करेंगे तो करिएगा सानिया मल्होत्रा नाइला ग्रेवाल एंड यू सी दिस एंड द वीडियोज़ आर गोइंग वायरल अक्रॉस सोशल मीडिया। बहुत मज़ा आ रहा है इनको देख के एंड यू नो सानिया मल्होत्रा इज़ अ वेरी वेरी गुड हाईली ट्रेंड डांसर एंड वेन शी इज़ डांसिंग टू this it is attracting a lot of viral content around that as well. Sun rahe hain 104.9 FM Fun Asia Radio. Yahan par main thodi der aur hoon before I get into this break, lekin agar aap जानना चाहते हैं किसका जन्मदिन है तो हैं हमारे बहुत ही अमेजिंग स्टार जिनका जन्मदिन एंड आई जस्ट लव द स्टार, हैव वॉच हर फ्रॉम व्हेन शी स्टार्टेड टू वेयर शी इज़ नाउ अ ग्लोबल आइकॉन और इन ग्लोबल आइकॉन को हम सेलिब्रेट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो बने रहिए, वी विल बी सेलिब्रेटिंग द सुपर डुपर आइकॉन हु इज़ यू नो आवर देसी गर्ल से ग्लोबल गर्ल। कौन हो सकती हैं? आपने थोड़ा सा तो सोच ही लिया होगा और यू माइट हैव गेस्ट इट और आपके दिल में आ ही गया होगा, पर ये देसी गर्ल से ग्लोबल गर्ल हमारे लिए बहुत बड़ी प्राइड भी हैं एंड शी इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन फन एशिया रेडियो बिकॉज कल है इनका जन्मदिन। स्टार कलाकार को मुबारकबाद दे रहे हैं। आप कोई हैं जिनका जन्मदिन है या जिसे विश करना चाहते हो, फोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 9722355555 है स्टूडियो का नंबर और ये छोटा सा ब्रेक आपके लिए।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Documents या parcel भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर relocate करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी transport करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन।
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन।
12: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
13: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी।
1: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
20: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
19: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
21: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
22: इन प्लेनो।
21: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
23: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
23: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
23: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
23: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
24: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
25: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
0: वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था ब्रेक के जाने के पहले, वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस देसी गर्ल से ग्लोबल गर्ल सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुमारो एंड शी इज नन अदर देन पीसी प्रियंका चोपड़ा, पिगी चॉप्स बहुत कुछ बुलाया जाता है इनको, और अब तो बन गई हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। एक्ट्रेस रही हैं, हमने जाना है, सिंगर रही हैं, हमने पहचाना है, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट और वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन स्टार्स जो कॉन्कर कर लिया है नहीं बॉलीवुड को बट हॉलीवुड को भी। टुडे जब मैं उनका जन्मदिन मना रही हूँ, देन इज वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मोमेंट एज वेल। हैप्पी बर्थडे टू आर वेरी ओन, वेरी वेरी ओन देसी गर्ल।

0: con.
1: नहीं आका बॉस.
0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला.
2: This desi girl, our very beautiful, very own, from winning Miss World to winning hearts across continents, Priyanka Chopra has shown that talent, determination, or confidence can truly take you from India to the world stage. 2000 में उन्होंने जीता था ये खिताब और Miss World का, and she did so amazing with a lot of movies. But अगर उनका थोड़ा सा rewind करे बचपन, born to doctor parents, दोनों doctors थे Indian Army में. उन्होंने she lived in the US also as a teenager before returning to India, but पैदा हुई वो जमशेदपुर में 1982 में, और वर्ल्ड कप का खिताब जीता 2000 में, और सिर्फ वो 18 साल की थी. दैट इज़ सिंस व्हेन आई हैव बीन फॉलोइंग हर. उनकी फर्स्ट पिक्चर्स भी जो आते थे न्यूज़पेपर में, दैट टाइम न्यूज़पेपर वाज बिग, एंड यू नो शी हैड इट इन हर, द वे शी चोज हर रोल्स, वील कम टू दैट. बट उनका बॉलीवुड डेब्यू जो था द हीरो में था, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई. फिर उनकी स्पार्क नज़र आ ही गई थी, 2003 की ये फिल्म थी. और फिल्म तो उन्होंने की, लेकिन फिल्म से मूव ऑन हुई, गाना भी किया. शी सैंग एग्जॉटिक विद पिटबुल और इन माय सिटी, एंड शी आल्सो इज अ पब्लिशर. शी पब्लिश्ड ऑथर, नॉट अ पब्लिशर बट अ पब्लिश्ड ऑथर, जिन्होंने अनफिनिश्ड लिखा, इट्स हर मेमोयर. और यही तो है. फिर फिल्मों की एंट्री आपको बताऊंगी इस गाने के बाद, कि एक से बढ़कर एक उन्होंने रोल किए हैं, एंड द वे शी हैज रियली ग्रोन इन हर फिल्म करियर एज वेल. आई थिंक कहीं पर वो खो गई हैं हमारी फिल्मों से, बॉलीवुड में नहीं है, और अब उनको उस किस्म के रोल्स नहीं मिल रहे. बट शी इज़ गेटिंग बैक, विच आई हियर, बट वी विल सी दैट.

टंग टंग टंग, इन्होंने मारी एंट्री वैसे एजी फिनटेक्स ने जब से डालस में, तब से आपके जो टैक्स एंड अकाउंटिंग की जो टेंशन है वो दूर हो चुकी है। दिस पार्ट ऑफ माय शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स। और ये जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, दे कैन टेक केयर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ स्टार्टअप और एन एस्टैब्लिश बिजनेस। एजी फिनटेक्स ऑफर करते हैं आपको इनोवेटिव फिनेंशियल सॉल्यूशंस जो हर एक की नीड्स के अनुसार केटर्ड है, फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल, अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशंस, टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। इतने सारे सर्विसेज हैं इनके, एजी फिनटेक्स नाम है। एंट्री इनकी हुई है हमारी ज़िंदगी में टू मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस स्ट्रेसफुल। दे हेल्प कीप योर फिनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी। ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है एंड कमिटेड टू योर सक्सेस। एजी फिनटेक्स इज योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग फिनेंशियल फ्यूचर। करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर दबाना है 972 4699429888। जब हम फनीजा रेडियो का नंबर बताते हैं आपको 972-235-5555, तो वो तो ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आ जाता है। वी डोंट इवन हैव टू पुट आर माइंड इन टू इट, इट इज़ लाइक जस्ट हैपन्स। सो हियर यू आर, दिस शुड ऑल्सो जस्ट हैपन। इसको स्पीड डायल में याद रखिए 4699429888 और विजिट agfintax.com टुडे। मना रहे हैं जन्मदिन हमारी पीसी का, प्रियंका चोपड़ा का, जो देसी गर्ल बनी एब्सोल्युटली ग्लोबल गर्ल फैशन में, तो क्या फैशनेबल नज़र आई है। कंगना रनौत को भी मात दे दिया था, वहीं पर समझ आ गया था, ओ माय गॉड, शी हैज़ द ओम्फ, शी हैज़ द स्वीटनेस, शी हैज़ एन ऑल राउंडेड पर्सनालिटी। मधुर भंडारकर की बहुत ही कमाल की फिल्म थी। प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और बहुत सारे फैशन की बैकग्राउंड स्टोरी पर, कि फैशन स्टेज के पीछे व्हाट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स, सुपर्बली डन। शी वॉज माइंड ब्लोइंग इन दिस फिल्म। एंड उसी के बाद आई थी एतराज़, जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था। करीना कपूर थी जो इस फिल्म में पॉजिटिव रोल थी, अक्षय कुमार के साथ, अक्षय कुमार की वाइफ कम लॉयर, एंड शी वॉज ब्रिलियंट इन एतराज़। आई वुड से दैट इज़ व्हेन आई, उनके ने सब डार्क साइड्स भी नज़र आते हैं, एक्टिंग इज़ लाइक यू कैन से ब्रिंग इट ऑन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दैट्स वॉट यू सॉ इन हर इन एतराज, शी वॉज सुपरबली गुड। और फिर कॉमेडी आई उनकी, मुझसे शादी करोगी, दैट वॉज सुपर कॉमेडी, क्यूट कॉमेडी। अक्षय कुमार, सलमान खान की फिल्म थी और उनके साथ उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुगराज अमरीश पुरी डैड थे, विच टोटली वॉज अ फन फ्लेजड प्रॉपर कॉमेडी फिल्म। दैट वॉज अगेन शी ग्रू, एक के बाद एक एवोल्यूशन हुई इनकी। हम बात करेंगे और फिल्मों की, लेकिन गाना सुनते ही ये

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
7: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
11: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर? एट shopcompareinsure.com, वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स, वी आर ग्रोइंग अ नेटवर्क ऑफ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स. वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, we provide the tools, training, mentorship and access to top rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
15: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
16: For decades, one man has made the world dance.
13: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
2: Welcome, Swagat Sasrikal. Kemon acho? Kem cho? Main hoon aapki host Namnita. Ye 5 se 8 straight from the heart. Kehti hoon, aa chuka hai weekend ka vibe because it is Friday.

0: राहत की सांस ले लीजिए। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। सीरियसली सारे संडे करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो धमाल प्रैक्टिस तो होगा ही, प्लान्ड होगा ही। और ये शाम जो भी चोर्स वोर्स, नो यार, आई डोंट लाइक द चोर्स टू बी पुट एंड शिफ्टेड टू द वीकेंड। चोर्स शुड बी डन शाम को ऑफिस से आते वक्त, यू नो, जस्ट गेट इट डन ऑफ योर हुक सो दैट यू कैन स्पेंड योर फैमिली टाइम एट होम विद द पीपल यू लव। एंड या रेडियो सुनो, साथ में मिल के गाने सुनो, खाने पर निकलो। इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, डैलस उफन रहा है रेस्टोरेंट्स, कहीं ना कहीं एवरी डे टुंग टुंग टुंग करके पॉपअप हो रहे हैं। एंड अमेजिंग, एक से बढ़कर एक खाना। वी आर सो स्पॉइल्ड, वी आर सो लव्ड। हम सोचते हैं इंडिया जाके हम स्पॉइल्ड होते हैं, नहीं, हमें डैलस ही स्पॉइल करता है इतना कुछ खिला के। सो वेट वॉचिंग अगर करना हो तो वहाँ पर थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, विद सो मच यम्मी फूड अराउंड कि आजकल मिस ही नहीं होता है कि यहाँ इंडिया की गलियों की चाट, यहाँ सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ मिलता है। जन्मदिन मना रहे हैं प्रियंका चोपड़ा का।
1: आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ खास गेस्ट आए हैं, रजाड़ियों के नए डॉन राम भाई। और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन करना हमारा फर्ज थे, तो उनके ऑनर की खुशी में एक खास सॉन्ग की पेशकश करूँगा।

सुपर, ये है हमारी प्रियंका चोपड़ा जो इतना कमाल का काम करती हैं एंड थैंकफुली शी हैज गिवन अस सच अमेजिंग अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क. अगर आप सोचे तो देन शी डिड क्रिश विथ ऋतिक रोशन, दी ऋतिक रोशन, द ग्रीक गॉड, एंड देन सीरियसली केम आउट सो लवली. और शाहरुख खान के अगेंस्ट भी, के साथ भी उन्होंने काम किया रोमा बन के इन द फिल्म डॉन, जो जंगली बिल्ली डॉन में ये प्रियंका चोपड़ा एंड दोस्ताना, विच यू हर्ड द देसी गर्ल इज फ्रॉम दोस्ताना. बट आई रियली रियली थॉट शी नेल्ड द एक्टिंग व्हेन शी प्लेड इन द फिल्म बर्फी झिलमिल जब वो बनी, द ऑटिस्टिक गर्ल दैट शी प्लेड, एंड शी रियली गॉट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. And I think she should have won the award for it, which she did not. Us saal, you know, there was the other heroine. I'm sorry. Vidya Balan, jinko mil gaya tha wo award, but she was the one I felt was the best. Mary Kom, jahan par the boxer Mary Kom ko unhone unki jo biopic bani thi usko kya acche se nibhaya hai. Just see the way she has grown in her life. Even Bajirao Mastani mein unhone bahut kamal ka Kashi Bai play kiya hai. And that's what we say, that when you are playing a character and you are a star, you are not playing just one character. You are playing characters and getting into the skin of the character. That was Priyanka Chopra.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
2: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: I've been researching retirement planning.
0: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
0: Or you could just talk to Wealth Tactic.
6: What's the difference?
0: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
2: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
7: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
8: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag aur upar se ye stress.
9: Arey relax, you need a cool therapy.
8: Therapy? Wo to bahut mehengi hai.
9: Nahi, cool matlab cool cha therapy.
8: Ye kya hota?
9: Simple, Chandigarh Bites Express in Allen.
6: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites. Straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
2: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
10: Accident ke baad insurance company se deal karna bahut mushkil ho gaya tha. Na wo help kar rahe the, na mujhe samajh aa raha tha ki kya karun. I felt completely stuck. Phir maine Omar Khwaja team ko call kiya aur sab kuch change ho gaya. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
11: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

104.9 FM Furniture Radio सुन रहे हैं पांच से आज Straight from the Heart on my show. Thank God it's Friday. किसी ने कहा तू खुश है ये खबर ही बहुत है मेरे लिए. तू खुश है ये खबर ही बहुत है मेरे लिए. अब तू किसके साथ है मुझे इससे कोई मतलब नहीं. Wow, how many people just feel that your happiness is the most important? अगर आपके

लिए अब तू किसके साथ है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वाओ, हाउ मेनी पीपल जस्ट फील दैट योर हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास एक इंसान है ना जो इस तरह सोचता है आपके लिए, ये समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दैट समबडी लव्स यू सो सो सो मच, जिसे सिर्फ पड़ी है तो आपकी खुशी की।

from the film. Cocktail 2. ये शाहिद कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना की फिल्म आई थी अभी हाल ही में, Cocktail 2. Very well accepted. People loved it. बहुत स्टोरी लाइन अच्छी थी एंड द इमोशंस वर सो गुड. इमोशंस के नाम पे, ख्याल पे याद आया मेरे झिलुरा में, ही इज सो फनी. कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी तुक्का बिठा लेते हैं. आज उन्होंने क्या तुक्का बिठाया, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस. तो कह रहे हैं बैल और गाय में ये बातें चल रही है. बैल जो यू नो बुल होता है, बैल और गाय में ये बातें चल रही है. बैल कहता है क्या बोलती तू. अगर सोचिए उन लोग दोनों में ऐसी ऐसी बातें हो, तो बैल कहता है क्या बोलती तू, गाय क्या कहेगी, क्या मैं बोलूँ. बैल सुन, गाय सुना. बैल बोलता है आती क्या खंडाला, नहीं नहीं आती क्या गौशाला, नॉट खंडाला. गाय कहता है क्या करूँ आके मैं गौशाला. बैल कहता है मुंडी हिलाएंगे, घास चबाएंगे, गोबर फैलाएंगे और क्या. फनी <Funny, laughs> मतलब फनी को तो क्या बोलती तू, गाय क्या मैं बोलू, सुन सुना आती क्या गौशाला, क्या करूं आके मैं गौशाला. दैट वॉज द कॉन्वर्सेशन. बैल कहता है मुंडी हिलाएंगे, घास चबाएंगे, गोबर फैलाएंगे और क्या. वैसे यू नो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. और ये मेडिसिन आपके कम पड़ रही हो और आप सच्ची बीमार पड़ जाए ना, तब जाना पड़ता है हेल्थ केयर. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है जो हमारे डैलस में है, एंड दे आर द पीपल हु रियली रियली केयर फॉर यू. क्योंकि वो सिर्फ 5-10 मिनट ही आपके साथ नहीं बिताते, पूरे 30 मिनट आपके हेल्थ के बारे में, आपके बारे में इंटरनली पूछते हैं, समझते हैं और आपकी ट्रूली मदद करने की कोशिश करते हैं. और जो मेडिसिन मिलती है आपको विल डेफिनेटली हेल्प यू क्योर दैट एंड ब्रिंग दैट लाफ्टर बैक इन योर लाइफ, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. पैशन हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट a health care which treats you as a patient, but aapko family

समझते हैं। इस फैमिली के लिए आप इस हेल्थ केयर में जाइए और ये हेल्थ केयर फैमिली इस पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल, एंजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डिफिशियंसी टेस्टिंग एंड मोर आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ। आप स्केड्यूल कर लीजिए अपॉइंटमेंट आज ही, फोन उठाइए, नंबर दबाइए 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आवर पैशन, दैट इज व्हाट दे से।

हुआ क्या पता है, झीलू राम ना टैटू बनवा रहे थे, टैटू या, और जोर जोर से रो रहे थे। तो मैंने कहा यार यार झीलू राम, जब दर्द नहीं सहा जा रहा है तो आप क्यों टैटू बना रहे हो? तो झीलू राम कहते दर्द से नहीं रो रहा हूँ मैं। तो मैं बोली तो फिर किससे रो रहे हो? बोले करीना लिखवाना था, इस बेवकूफ ने कमीना लिख दिया। करीना लिखा रहे थे, कमीना लिख दिया। ओ माय गॉड, अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो करीना क्या करेगी आपका? रोना तो पहले से पड़ेगा। इमेजिन कमीने के साथ आपको जीना भी पड़ेगा।

0: Surya 104.9 FM Funija Radio Baby Do Die Do. That's Huma Qureshi ka ye ek brand new film aayi thi last ye mahine. Sun rahe 104.9 aur pata hai crave kar rahe hain kuch cheesy with a desi twist. Aisa kuch man ho raha hai. Fun Pizza Kitchen hai na jahan par flavor meet karta hai fire se. For all my veggie lovers, try the Achari Paneer Pizza. Packed with that tangy achar punch and soft paneer melting in spicy magic. Yaar, aise description mein hi paani mein aa jata hai muh mein, hai na? Aur meat lovers, aapke liye hai tandoori chicken pizza, jo pure smoky perfection ke saath straight from the tandoor to your taste buds ko tingle kar deta hai. So, whether you like it bold or beautifully balanced, there's a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For details, aap pahunch jaiye funpizzakitchen.com. Here is a chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Aur ye aapko milega agar aap mujhe bata sake, girl hindi mein jud sake. Aur simple hai, hindi mein baat karna hai. Angrezi bilkul nahi chalegi. Yes, you are allowed to get into the mode of Hindi and Urdu. But yaar, ye kya haal bana rakha hai? Angrezi kyu ghus jati hai beech mein? Wo nahi karna hai. Tab aapko mil sakta hai $10 ka gift card from Fun Pizza Kitchen. Phone uthayega, number dabayega 9722355555 studio ka number. Chote se break ki taraf bad hai. Break se aate hi shuru hoga ye game show jiska naam hai Gal Hindi Hindi Bol.
1: Gal Hindi Hindi Bol.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग फोकस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
9: सुनो कल बहुत काम है. पहले grocery, फिर पूजा का सामान, gifts भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं cooking नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा dinner करके आएंगे.
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
7: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
10: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 5,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co. at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
14: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
0: One of 4.9 FM Funny Jar Radio पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों. किसी ने कहा है, मत भागो उसके पीछे जिसको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं. सोच के देखिए, कल हिंदी बोल शुरू हो चुका है, अब सारी की सारी लाइनें बज रही हैं मेरी. और अभी एक आंटी हैं जो इंडिया से आई हुई हैं और हमारे डैलस के ही एक लिसनर चाहते हैं कि वो हम मुझसे गल हिंदी हिंदी में बात करें. वो तो हिंदी बोल रही है, बट हम देखते हैं कैसा जाता है ये. गुड इवनिंग फनीशर रेडियो, आपका स्वागत है फनीशर रेडियो पर. वेलकम वेलकम टू डैलस, वेलकम टू फनीशर रेडियो. हाय
15: हाय
0: हाय, वंडरफुल. क्या है आपका नाम आंटी जी?
15: मेरा नाम अश्विनी अनिल राव भंडेवार.
0: वाह, अश्विनी अनिल राव भंडेवाल. ओ माय गॉड, ये तो दीनानाथ चौहान टाइप का है, यू नो, विजय दीनानाथ चौहान, ऐसे बोल रही हो आप अश्विनी जी. हाँ, वेरी नाइस. महाराष्ट्र से हैं आप?
15: ओ, महाराष्ट्र से.
0: सो मराठी भी बोलती और हिंदी भी?
15: ओ, दोनों भी बात कर सकती.
0: चलिए आपका वक्त शुरू करती. ओके
15: ओके
0: ओके, वंडरफुल. ऑल राइट, शुरू हो चुका है अश्विनी जी का वक्त. गल हिंदी हिंदी बोलने भाई, वक्त शुरू करो. सुपर जुपर. तो कितना टाइम हो गया आपको इधर आए हुए?
15: 17 दिन हो गए.
0: वेरी नाइस. तो बहुत कितना टाइम रहने का इरादा है?
15: 2 महीने.
0: कर क्या रही हैं आजकल आप टाइम पास के लिए?
15: कुछ भी नहीं, बाहर घूम, बच्चा घुमाने को ले जाता.
0: हाँ,
15: घूम कर आ जाते.
0: सो क्यूट, आपकी हिंदी क्यूट क्यूट है. सो वेरी स्वीट. तो फिर यहाँ पर मन लग जाता आपका?
15: लगता थोड़ा सा, कुछ ऐसा खाना बनाना, कुछ करना, घर पे काम, बहू को मदद करना.
0: नाइस, सुपर. सो कोई प्लान है इधर उधर जाने का?
15: नहीं, अभी तो कुछ नहीं ठहरा.
0: सो आप रेडियो रेगुलर सुनते हैं?
15: हाँ.
0: क्या रेगुलरली?
15: क्या गाड़ी में?
0: हाँ, गाड़ी में जब
15: गाड़ी में सुनते हैं.
0: वेरी नाइस. बट टेल मी, ग्रोसरी शॉपिंग आप जाते हो कि घर पे रहते हो?
15: नहीं, ऐसा कुछ नहीं. शॉपिंग कभी गए तो गए, जाते नहीं तो घर पे रहते.
0: हाँ आंटी, शॉपिंग निकल गया आपका.
15: ओ,
0: मैं नहीं चाह रही थी, मैं इतना हिंदी में बात कर रही थी. शॉपिंग, बट फिर भी मैं आपको फैन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 का गिफ्ट कार्ड दे रही हूँ. गो एंड एंजॉय पिज्जा देयर. ऑलराइट,
15: ठीक है,
0: कहीं आप जाइएगा मत, मैं आपका इन्फॉर्मेशन लूंगी. थैंक यू सो मच।

नाइस सॉन्ग, इश्क विश्क रीबाउंड। ये इश्क विश्क आई थी एक फिल्म, उसके बाद एक इश्क विश्क रीबाउंड भी आई थी। फन एशिया फिल्म्स ने ये फिल्म एक्चुअली रिलीज करी थी ऑल ओवर द यूएस, एंड दिस इज द सॉन्ग फ्रॉम देयर। वापस ये फिल्म का गाना आया तो इट रिमाइंडेड मी फन एशिया फिल्म्स पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क फन एशिया 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों ट्यून इन करने के लिए। पता है आपको, प्लानिंग करना है आपको कोई वेडिंग का, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या फिर कोई स्पेशल सेलिब्रेशन हो, ऐसा कुछ है, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकर क्या होगा, केटरिंग कैसे होगा, छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में सोच रहे हैं, एक नाम याद रखिए, यू शुड नो वेनेसा इवेंट्स। वो हेल्प करते हैं आपको टू मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन टू ब्यूटिफुल डेकर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड। तो फिर आप सिर्फ फोकस कर सकते हैं ऑन मेकिंग मेमोरीज वाइल दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। कॉल हरि बसेरा आज ही एट 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner. Sun rahe hain 104.9 FM Fun Asia Radio.

शेर खुल गए तो ये हो गया, लेकिन शेर अगर हमारे डैलस में भी हो तो क्या हो, माइकल जैक्सन वाला शेर। यस, मतांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन उर्फ प्रभु देवा लाइव डैलस में। उनको ज्वाइन कर रहे हैं लॉरेन गोटलेब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नील, हरिनी नीलाकांतन, नताशा शेरपा एंड सनवे मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट। बहुत ही धमाल का कॉन्सर्ट होने वाला है और प्रभु देवा बीच में होंगे, ये सारे उनके डांस पार्टनर्स। सैटरडे अगस्त 1 को होने वाला है एट द टेक्सस ट्रस्सी यू सेंटर थिएटर ग्रैंड प्रेरी में। बुक कर लीजिए अपने टिकट्स, फोन उठाइए, नंबर दबाइए 248-233-828, 248, okay, 233-828। मीडिया पार्टनर है फनेजिया नेटवर्क यानी कि हम, तो इसलिए आप फनेजिया नेटवर्क पे आप पहुंच जाइए, उनके सोशल मीडिया पेजेस पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वहाँ पर आपको टिकट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो पिंड है, उस पिंड पोस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको टिकट लिंक मिलेगा, आप बस उस लिंक को क्लिक क्लिक क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएंगे टिकट्स के डिटेल्स या फिर टिकट लेने का ही तरीका तुरंत ही। दैट इज प्रभु देवा लाइव। ओह माय गॉड, कितने सारे अमेजिंग स्टार्स आ रहे हैं ना हमारे शहर में। डोंट यू वांट टू से वाओ?

0: Wow.
1: टोटल वाओ वंडरफुल 9 FM फन एजा सुन रहे हैं और ये तो वाओ वाला गाना. एंड छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद द फुल फ्लेजेड आर गर्ल हिंदी हिंदी बोल स्टार्ट्स. सो आपको नहीं करना है ये, कहीं जाना नहीं, लौट के आना है अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग पे भी निकले हो तो. बट फटाफट से टाल लीजिए छोटे से ब्रेक में, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा. और ये जो
2: tracks that put you on the right track.
1: So हम लाते हैं आपको ट्रैक पे, because we play the right tracks. कहीं जाएंगा मत, सुनते रहिए Fun Asia Radio. अभी मिलती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद.
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.